आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हे अरे हे सूरदास का औलाद, तो क्या सुनाई नहीं पड़ा था हम कहाँ कहाँ थे, हम कहाँ ठहरा करने को कहा गया गया?
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद खड़ा करो। हप, बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: हप, अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे? अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, का हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

घर बना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: सरता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: बरसों बाद ऊँट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जान जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, और क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, और मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ में आज वंशिका, और आप सभी सुन रहे हैं अभी फिल्मी टॉकीज विद आज प्रमा जी एंड आज वंशिका जी, ओनली ऑन रेडियो। गाना जो बजाते रहो दिल से, बिल्कुल रेडियो गाना पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं आज प्रमा जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं प्रमा जी?
1: वाह वाह वाह दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों और मेरे भाई और बहनों, जुड़ गया हूँ मैं भी आपके साथ, वंशिका जी के साथ और आपके साथ अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है फिल्मी बातें।
0: या फिल्मी टॉकीज, एनीथिंग यू कैन से। और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप नंबर से, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को यही कहना चाहूंगी, आप सभी जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप पे, यानी कि 8404841232 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइशों को, अपनी फीडबैक्स को हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस नंबर पे।
1: और वंशिका जी, और मैं ये अपने श्रोताओं को ये भी कहना चाहूँगा कि वो व्हाट्सएप पर ही अपनी फरमाइश भेजें और व्हाट्सएप पर ही मैं उनसे बातें करूँगा और अपने गाने भी व्हाट्सएप पर, अपनी चॉइस भी व्हाट्सएप पर ही भेजें। बहुत
0: बिल्कुल।
1: बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा साथ देने के लिए, और मैं
0: और
1: मिलता हूँ अभी
0: एक
1: आपसे।
0: एक गाने के बाद में थोड़ा सा तड़ाकेदार मूड करते हैं आप सभी का। एंजॉय कीजिएगा इस प्यासी पसंद को और नाचिए, क्योंकि हम तो जंगली हो गए हैं और आप सभी भी हो
1: हाँ, तो
0: जाइए।
1: दोस्तों और वंशिका जी, मैं अपनी पसंद का पहला गाना सुनाना चाहूँगा अपने प्यारे दोस्तों को, और सुनिए कैसा लगेगा ना, इसके बारे में थोड़ी फीडबैक भी दीजिएगा और मैं भी बताऊँगा इस गाने के बारे में क्या स्टोरी थी और किस फिल्म का ये गाना था।

0: तो दोस्तों कैसा लगा ये गाना? तड़क बड़क और कूदना उछलना कूदना फूदना सब के बारे में था ये गाना। और मैं भी अपने दोस्तों से यही कहूंगा कि आज थोड़े तड़कीले भड़कीले और मस्ती भरे गाने भेजिए अपनी पसंद के। तो उदास गानों में क्या रखा है, आज थोड़ा तड़क भड़क वाला शो करते हैं। और सभी दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि बढ़िया तड़क भड़क वाले और बड़े ही
1: जो मतलब इंजॉयबल गाने होंगे, डांसिंग गाने होंगे, वैसे गाने आप सभी भेज सकते हैं।
0: और सभी गानों को हम सुनाएंगे और सभी गानों पर हम आपको रिएक्शन भी देंगे और बातें भी करेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा किसी अपने सभी मित्रों से कि ये जो गाना था ये था जंगली फिल्म का, और ये फिल्म आई थी 1961 में, और इसमें जो संगीत था जी वो था शंकर जयकिशन जी का था, और ये शम्मी कपूर जी के करियर की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट फिल्म भी साबित हुई थी, जिसने उन्हें बॉलीवुड के रॉक स्टार और याहू स्टार के रूप में भी स्थापित किया था। और इसकी कुछ मैं मुख्य विशेषताएं बता देता हूँ इस फिल्म के बारे में। ये इस फिल्म का ये गाना याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे और शम्मी कपूर का पहाड़ों पर कूदते फांदते हुए चिल्लाना याहू इतना मशहूर हुआ कि वह आज भी उनकी पहचान बन चुका है। और शायरा बानो की बात करें तो ये शायरा बानो जी सबसे पहली फिल्म थी, और बतौर लीड एक्ट्रेस उन्होंने फिल्मों में काम किया था, और उनकी जोड़ी शम्मी कपूर के साथ बहुत ही पसंद की गई थी। शांतर संगीत की बात करें तो फिल्म के गाने जैसे एहसान तेरा होगा मुझ पर और काश्मीर की कली हूँ मैं और जा रे मेरे बचपन बहुत ही मशहूर हुए थे। और उस दौर की ज्यादातर फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, लेकिन जंगली को खूबसूरत ईस्टमैन कलर में फिल्माया गया था, जिससे दृश्यों को और भी आकर्षक बन गया था। तो मैं दोस्तों एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि इस फिल्म में थी ललिता पवार जी भी, और ललिता पवार जी का क्या रोल था और उन्होंने क्या रोल किया था और उनका नाम क्या था, इस बारे में भी इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा व्हाट्सएप पर, और मैं इस प्रश्न का जवाब भी आपसे बातें करके लूंगा। आप बताइएगा जिसका सवाल निश्चित जी बताइए।
1: जी, मैं देखती हूँ कि कौन कौन लिसनर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश कुमार जी हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं एक नए लिसनर जिनका नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता लग रहा है। आप प्लीज अपना नाम मुझे लिख के भेजिए। क्या नाम है आपका? नंबर के लास्ट में

0: कौन सी अभिनेत्री है, जरा विस्तार में बताइएगा तो भी
1: जरूर जरूर
0: चलेगा।
1: जरूर बताएंगे जी। और सबसे पहले
0: और हमारे साथ संदीप सुतार जी ने ये सवाल रखा है, राहुल पासी जी लिखते हैं कि गाना सुना है ओके जी, और यहाँ पे सर्वेश भगत जी का भी गाना है, और एक नए नए लिसनर है वो भी गाना लेके आए हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश कुमार जी सवाल भी लेके आए हैं, गाना भी लेके आए हैं। ये अभिनेता जीवन की मतलब आज हमें अभिनेता जीवन के फिल्मी सफर को जानना है आपसे।
1: जरूर जरूर जरूर बताएंगे जी। ये जो क्रिएटर अभिनेता थे जीवन, इनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। नमस्कार, जो मैंने सवाल पूछा है उसके से पहले गाना सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे प्रमाण जी आप, यहाँ जहाँ तक मुझे यहाँ पे
1: कोई तड़कता भड़कता गाना सुना, मैं मुझे वो गाना सुना दीजिए, वो जो गाना है ना, वो जो अमन जी गाते हैं कई बार पसंद का।
0: कौन सा, पिया मेरा
1: हाँ
0: ये
1: हाँ वो सुना दीजिए, मुझे
0: प्यारा।
1: बहुत अच्छा लगता है वो गाना। और वो अमन जी का लाजवाब गाना है और बहुत ही अच्छा पसंद है उनकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितने अपने आप सभी मिलकर अपने अपने आंसर दीजिए, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उससे मैं बात भी करूंगा अभी व्हाट्सएप पर।
0: जी मैं गाना ढूंढ लेती हूँ जब तक, और यहाँ पे मेरे पास दो तीन फीडबैक हैं जो कि मैं पढ़ लेती हूँ। लिखते हैं कि गाना बहुत प्यारा लगा, आज तक के जितने भी गाने हैं वो अच्छे बजेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, गाने अच्छे बजेंगे वो तो मुझे भी पता है और आप सभी को भी पता है।
1: तड़कते भड़कते उछल कूद वाले गाने भेजिएगा मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे मित्रों।
0: तो चलिए सुनते हैं गाने को जिसका नाम है तेरा मेरा प्यार अमर, इश्क मुर्शिद गाने मतलब इश्क मुर्शिद सीरियल का ओएसटी सॉन्ग। एंजॉय
1: बिल्कुल
0: कीजिए।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों बहुत ही अच्छा गाना लगता है मुझे ये, और ये जो अमन जी की फरमाइश का है और उनकी पसंद का जो ये गाना है मुझे बेहद दिल से पसंद है। और श्रोताओं मुझे लगता है आपको भी गाना काफी पसंद होगा। और वंशिका जी, अभी एक क्वेश्चन पूछा हमारे संदीप सुतार जी ने कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या है, उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो मैं यही बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, 1954 के अंदर ये वार्षिक पुरस्कार की जो प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार होता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो ये सबसे पहले मिला था जी मीना कुमारी जी को, और उनकी फिल्म आई थी बेजू बावरा 1952 में आई थी, और ये पुरस्कार मिला था जी 1954 में। और सबसे ज्यादा पुरस्कार किसने लिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, नूतन और काजोल ने ये पुरस्कार सबसे ज्यादा 5 बार जीते हैं। नूतन ने इसे सीमा फिल्म और सुजाता बंदनी मिली जैसी फिल्मों के बजाय मुख्य रूप से क्लासिक फिल्में जैसे सुजाता और ममता मुख्य रूप से मुख्य भूमिका के लिए भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे मीना कुमार जी ने। और लगातार जीत किसी हुई आलिया आलिया भट्ट ने हाल ही में साल 2023 और 2024 और 2025 में लगातार 3 बार गंगूबाई काठियावाड़ी और आर ओकी और रानी की प्रेम कहानी और जिगर के लिए यह पुरस्कार जीत कर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। तो किसने, मैं आलिया भट्ट जी ने।
1: जी आलिया भट्ट
0: इसकी जब सबसे पहले विजेता हुई थी जो मीना कुमारी हुई थी, शुरुआती दौर में लगातार 2 बार 1954 और 1955 में ये पुरस्कार अपने नाम किया था। मैं कुछ ऐसे ऐसे विजेताओं के नाम भी बताना चाहूंगा जो इस पुरस्कार को ले चुके थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, जैसे मीना कुमार जी ने लिया था बेजू बावरा फिल्म में 1954 में, नरगिस ने लिया था मदर इंडिया में 1958 में, और वहीदा रहमान जी ने एक गाइड फिल्म में 1986 में दिया। हेमा मालिनी जी ने भी ये पुरस्कार लिया जी गीता और गीता में 1973 में आई थी फिल्म संजीव कुमार के साथ। माधुरी दीक्षित ने बेटा दिल को पागल आदि आदि फिल्मों में से उसके पुरस्कार भी दिया। विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर कहानी में भी पुरस्कार इनके अपने नाम दिया था। तो दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों हो, तो वंशिका जी से मैं थोड़ी सी इजाजत लेना चाहूंगा, मैं कहना भी चाहूंगा वो अपनी तरफ का कोई खूबसूरत सा गाना
1: अभी
0: सुनाए
1: तो
0: या फिर किसी श्रोता,
1: तपन नसाजी की तो चलते मुझे तो गाना अभी दिमाग में आ नहीं रहा
0: अब
1: है।
0: देखिए श्रोता ने क्या आंसर दिए वो देखिए। तो
1: आंसर तो वैसे अभी मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, बट यहाँ पे मेरे पास नमस्कार पहुंच चुका है। यहाँ पे क्या नाम है आपका, प्लीज मुझे अपना नाम लिख के भेजिए। और गाना है इनका, गाने के बोल हैं, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। बिल्कुल सावन का महीना चल रहा है तो बुलाना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए आपके पसंद के गानों को प्ले कर देते हैं, सावन के झूलों ने मुझे बुलाया।
0: और जो प्रश्न मैंने पूछा था मेरे प्यारे श्रोता और मेरे भाई और बहनों, मैंने ये पूछा था ये फिल्म जंगली में ललिता पवार जी ने क्या भूमिका निभाई थी, फिल्म में उनका क्या नाम था, इसका जवाब भी दीजिए। फिर जिसने सही जवाब दिया उससे हमारे व्हाट्सएप पर बात भी करेंगे।
1: एंजॉय कीजिए प्यारी।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला और आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। राहुल पासी जी लिखते हैं गाना बहुत प्यारा लगा और जी अभी तो आए हैं आप तो उसे कोशिश करती हूँ बिल्कुल मैं और गाने का बोलने से कहीं देर ना हो जाए तो थोड़ी सी देर तो होगी। राजेश कुमार जी लिखते हैं राजेश जी का सही आंसर है गोपाल जी का बट सबसे पहले गोपाल पाटीदार जी का सही आंसर है। और निकलेस जी लिखते हैं वंशिका जी आज परमार जी और वंशिका जी हम भी आ चुके हैं और गुड आफ्टरनून स्वागत है आपका भी बहुत वेलकम है।
1: वेरी वेरी थैंक्स फॉर टू मिस्टर निकलेस जी आई लाइक यू एंड योर वॉइस इज सो स्वीट प्लीज गिव मी फीडबैक ऑन योर लवली वॉइस।
0: थैंक यू सो मच जी। गोपाल पाटीदार जी का मतलब आंसर बिल्कुल सही है उन्होंने कहा है कि माँ की भूमिका निभाता है बिल्कुल सही बात है भूमिका माँ की निभाई थी वहाँ पे ललिता पवार जी ने है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल इनसे बात करते हैं कॉल करिए।
0: तो चलिए गोपाल पाटीदार जी से बात करते हैं।
1: हेलो
2: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार जी गोपाल जी गोपाल पाटीदार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतना सबसे ठीक आंसर दिया सबसे पहले और पूरा कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम आपको
2: जी अच्छा लग रहा
1: है और आपसे बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
2: जी।
1: कहाँ से हैं गोपाल जी आप
2: जी हम रतलाम जिले के नंदलेडा से
1: अच्छा अच्छा मध्य प्रदेश से हैं आप तो रेडियो हॉस्टल आपको अच्छा लगता है इसलिए उसके सारे प्रोग्राम सुनते हैं आप हैं
2: जी सर बहुत ही अच्छा लगता है इसके प्रोग्राम अच्छे चलते हैं
1: बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कौन सा गाना अपनी पसंद का सुनना चाहेंगे आप
2: जी सर वो गाना सुना दी आज तक याद कुछ रहता नहीं
1: आजकल याद कुछ रहता नहीं वंशिका जी देखिए सुनाइए फिर तो और हमारे गोपाल पाटीदार जी आपको मैं बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आए बहुत ही अच्छा लगा मुझे और आपकी पसंद का गाना अभी वंशिका जी सुनाती हैं सुनिए आप
0: नगीना
1: मूवी
0: का गाना
1: नगीना मूवी फिल्म का गाना है जी आपने उसकी फरमाइश की है तो वही आपको हम सुनाएंगे
0: सुनवा दिया एंजॉय
1: कीजिए।

0: बिल्कुल, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही प्यारी पसंद है। कुमार जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ जो प्यारे प्यारे खूबसूरत प्यारे और बड़े ही अच्छे श्रोता जो हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे एक मित्र ने अभी मुझसे पूछा था कि जीवन जो हमारे चरित्र अभिनेता थे उनके बारे में कुछ बताइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जन्म, जीवन जी का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1915 में, जम श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर आता है, और एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था। उनके दादा गिल्डर के गवर्नर भी रह चुके थे। बचपन में माता पिता का साया उनके सर से उठ जाने के बाद फिल्मों के प्रति दीवान के कारण मात्र 18 साल की उम्र में ही तो उन्होंने सिर्फ जेब में 26 रुपये लिए और बम्बई आ गई। और उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी मुंबई के शुरुआती दिनों में। उन्होंने स्टूडियो में रिफ्लेक्टर बॉय यानी रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम किया, और फिर निर्देशक मोहन सिन्हा की फिल्म फैशनेबल इंडिया जो 1935 में आई थी उसमें अभिनय भी किया। और ये हमारे धार्मिक जो सीरियल होते थे, जो पारंपरिक सीरियल थे जैसे रामायण था या और भी थे, उन्होंने उसमें नाथ की भूमिका बड़े ही आइकॉनिक तरीके से और आइकॉनिक किरदार भी निभाया, और वह बड़े पर्दे पर सबसे खूंखार और लोकप्रिय खलनायकों में भी अपनी गहरी पहचान बनाई उन्होंने। तो वंशिका जी, मैं यही पूछना चाहूंगा अपने प्यारे दोस्तों से कि जीवन जी के पुत्र हुए हैं जी, उनका नाम क्या था? अगर उनका नाम आप बताना चाहें तो बताइएगा, और साथ में उनके सुपुत्र की किसी फिल्म का गाना भी जरूर सुनवाइएगा हमारे प्यारे श्रोताओं को। तो आप, मैं ही इस प्रश्न को फिर सुन लीजिए, यह कैरेक्टर अभिनेता जीवन जी के बेटे का क्या नाम था, और जब नाम आप बताएंगे तो उसके उससे संबंधित कोई गाना भी जरूर लेकर आए। मुंशिका जी बताइए श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, और यहाँ पे मेरे पास आंसर सबसे भेजने लगे। 8404841232 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसके साथ में हम आपको फीडबैक भी आ चुके हैं। आप अपना नाम मुझे जरूर लिख के भेजिए, लिखते हैं बहुत ही शानदार शानदार जानकारी दे रहे हैं धन्य परमार सर जी, बट आप अपना नाम लिख के भेजिए, वो जानकारी मुझे पहले चाहिए। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं, नगीना मूवी का बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला है, और आंसर आ चुके हैं मेरे पास बहुत फास्ट है सभी। और आर के रवि जी लिखते हैं, नाइस सॉन्ग है। सर्वेश भगत जी का फीडबैक आ चुका है, वो भी एक बार सुन लेते हैं, क्या कहते हैं?
2: परमार जी, एम एस परमार जी, आर जे वंशिका जी, हम भी जुड़े हुए हैं, हमारा भी हाजिर लगा
0: जी, लगवा दी
2: दीजिए।
0: रजिस्टर में हाजिरी।
2: धन्यवाद, इतना अच्छा
1: हमारे
2: गाना सुना है
1: हमारे
2: आपने,
1: प्यारे
2: अच्छा गाना
1: भाई साहब सर्वेश
2: सुना है,
1: भगत
2: धन्यवाद।
1: जी, आप तो है ही बस माशाल्लाह, कि आपके बारे में तो क्या तारीफ करूं मैं। हमारे सर्वेश भगत भाई साहब का तो कहना ही क्या है, उनकी उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके फीडबैक, उनकी प्यारी बातें, उनके प्यारे अंदाज में दिए हुए फीडबैक में दिल में और दिमाग पर हमेशा घूमते रहते हैं वो। तो वंशिका जी और सर्वेश भगत जी का के बारे में तो कुछ ज़्यादा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मुकाबला और उनके फीडबैक का सानी तो कोई है ही नहीं। तो
0: बिल्कुल,
1: आंसर
0: अजय
1: आए
0: भगत जी
1: कुछ?
0: भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। किशनगंज बिहार से जुड़े हैं और फरमाइश को लेकर जुड़े हैं। बिल्कुल, आंसर आ चुके हैं मेरे पास। अमीना खान जी जुड़ चुकी हैं। ओके जी, वैसे अमीना जी प्लीज मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी रानी की तबीयत कैसी है, और जो जो श्रोता चाहते हैं कि उनको कॉल ना किया जाए तो प्लीज साथ में लिख के नो कॉल भी लिख के भेज दीजिए।
1: और अमीना जी, अमीना खान जी, मुझे अभी पता लगा कि आपकी बिटिया की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी बिटिया जल्दी जल्दी आपके अल्लाह में ठीक कर दें उन्हें, और जल्दी से जल्दी आपके दिमाग पर जो टेंशन है अपनी बिटिया के बारे में वो दूर हो जाए। तो अमीना खान जी, थोड़ा खुश रहिए और खुश होकर प्रोग्राम सुनिए। बाकी जैसी बेटी हुए आपकी, वैसी बेटी मेरी, तो हम अपने अल्लाह ताला से उनके बारे में थोड़ा सा ये
0: दुआएं
1: कहेंगे
0: जरूर मांगेंगे।
1: और दुआएं भी मांगेंगे कि भाई जल्दी जल्दी तंदुरुस्त हो जाए।
0: बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला गाना में यहाँ पे सर्वेश भगत जी का है, तो सर्वेश जी की वॉइस मैच है तो उसको एक बार सुन लेते हैं। क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी?
2: आरजे एमएस परमार जी, आरजे वंशिका जी, आज
0: जी
2: हमारा फरमाइश का फिल्म है पारस मनी, और गाने का बोला है सलामत रहो।
1: वाह वाह वाह
0: फेवरेट गाना
1: वाह।
0: है परमार जी
2: और
0: का।
2: रेडियो गाना सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को बना तो जो टिप्पण से बाद हम सर्वेश लोग बता दे रहता इला वैसा ली प्यार से बोला हमारा परिवार सतीश को कहते हैं बहुत बहुत सुंदर बहुत आनंद से करें दुकान सुनी कुमारी मनी कुमारी सुरेश कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख भाई जी तुम्हाराम पाटिल जी सैयद देवनी जी आर जे एम एस परमार जी आर जे वंशिका जी आर जे अमन सर जी सुंदरता की मूरत जी और आरजे आकांक्षा जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी सभी को सुना दीजिएगा जयराम जी के
1: जयराम जी की।
2: जी
1: जयराम
2: और
1: जी की जी, सुरेश
2: राम
1: भगत जी आपकी
2: राम।
1: जो बातें हैं और जो आपका अंदाज है वो तो मेरे दिल को छाया हुआ है और ऐसे लगता है जैसे मेले में बिछड़े हुए मेरे भाई हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझसे आप बातें करके और बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ मैं आप। तो नमस्कार जी, देखिए अभी किसी श्रोता की अगर फरमाइश आई है तो सुनाइए।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए सुनवाते हैं, सर्वेश भगत जी की तो फरमाइश थी तो उनकी भी
1: सुना
0: फरमाइश लगाए
1: दीजिए और
0: पारस मनी से
1: फिर
0: गाना।
1: उसके बाद आंसर देखते हैं हमारे किन श्रोतों के आंसर आ रहे हैं। और ये जो
0: रोशन
1: सर्वेश भगत जी का जो गाना है ये मेरी पसंद का सुपर हिट गाना है और मेरी पसंद का बहुत ही प्यारा गाना है ये, और इस गाने को मैं बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूँ।

0: आगे का गाना भूल गई,
1: भूलो तो
0: एंजॉय कीजिए।
1: मेरी रानी हो तुम तो जहाँ की।
0: सलामत रहो, सलामत रहो। गला मेरा खराब है बट गाना बड़ा अच्छा है, एंजॉय।

0: गाना बहुत ही प्यारा रहा, पारस फिल्म मूवी का सलामत रहो सलामत रहो। और विश्व चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हम भी जुड़ गए अभी तक कार्यक्रम में। नमस्कार राधे राधे, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे हम। अच्छा जी, ओके, कोशिश करती हूँ मैं। और यहाँ सर्वेश भगत जी का फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे एमएस परमार जी, आरजे वंशिका जी, दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परमाइश अपने प्रोग्राम में जगह देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। निकलस जी का फीडबैक आ चुका है।
2: What a beautiful old song, my friend is saying, Mr. R.J. Parmar, you have a powerful music, I know very well. And your daughter, she's playing also wonderful new song, that's also wonderful. And I want to say one more word, please listen R.J. I'll pray to God, Aman Khan's daughter, she get well soon. This is my bottom of my heart. I pray for her. She'll be all right. No problem.
0: Thank you so much, Niklas ji, for this wonderful feedback and your adorable words for Amina Khan's daughter. And I also wish that she will be fine soon. और यहाँ पे अमिना खान जी लिखते हैं, आज ब्रह्मा जी और आज वंशिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खैरियत पूछी बेटिया रानी के लिए। ओके जी, ओके जी, मैं कोशिश करूंगी। और यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं। गोपाल पाटीदार जी कहते हैं, मेरे महबूब तुझे आना होगा, अपनी पसंद के गाने भी उन्होंने भेजे हैं, साथ में अपने आंसर्स भी भेजे हैं। आंसर बटन सबसे पहले हमारे पास वीरबल बघेल जी हैं। ये वीरबल बघेल जी, अच्छा आप हैं ये, तो स्वागत है आपका आदरणीय वंशिका जी, मैं वीरबल बघेल हूँ। अच्छा जी, वीरबल जी आपका नंबर चेंज हो गया ना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया वीरबल बघेल जी, और आपका नंबर नया आया, इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं सकता। तो वीरबल बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
0: तो चलिए, वीरबल जी का सबसे पहले आंसर मेरे पास पहुंचा है, किरण कुमार भूषण जीवन जी। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, तो आप इसे कॉल की जाएगी। और बाकी लिसनर जैसे संदीप सितार जी, राजेश कुमार जी, गोपाल पाटीदार जी, अमीना जी हैं, विष्णु जी हैं और निकलेश जी हैं, सभी ने सही आंसर दिया। बट सबसे पहले संदीप, मतलब वीरबल जी का, वीरबल जी से बातचीत कर लेते हैं।

0: आदरणीय वंशिका जी और आदरणीय परमार सर जी नमस्कार।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत नमस्कार बीरबल जी, बीरबल साहब बहुत बहुत नमस्कार। और आप मेरे प्रोग्राम में आए तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और अपने आपको बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपसे बातें हो रही हैं मेरी।
2: वेलकम बीरबल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के फिल्मी बातों में रेडियो गाना पे।
0: बिल्कुल, मैं भी आदरणीय वंशिका जी और आदरणीय परमार सर जी आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और स्वागत कर चुका हूं मैं कार्यक्रम के शुरुआत में, लेकिन मेरा नंबर पता नहीं क्यों आप समझ नहीं पाए, वही नंबर है मेरा पुराना वाला,
2: बट मेरे ख्याल से अनसेव हो गया हमारा, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा, अनसेव हो चुका है वो नंबर ना, मैं कह के अमन जी से सेव करा रही
0: हो सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी प्यारी प्यारी बातें और फिल्मी दुनिया की जानकारी आदरणीय साहब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोता भाई बहनों की जो पसंद है उनको भी सुन करके दिल बहुत खुश है।
1: तो बीरबल जी, आपकी बातें बड़ी ही खूबसूरत प्यारी और हर दिल लजीज होती है और मैं आपकी सारी बातों को अपने दिल से ही सुनता हूँ और बड़ा प्यार भी है आपसे मुझे और बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें कर बीरबल जी। और आपका आपके प्रोफाइल में आपके बेटे की और बेटिया की फोटो भी देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं आपके।
2: और आंसर बता दीजिए एक बार,
1: आंसर बताइएगा।
0: बिल्कुल, ये तो आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह आदरणीय जी। अभी जो जीवन जी के पुत्रों के बारे में आपने जानकारी पूछी थी, उनके दो पुत्र हैं किरण कुमार और भूषण जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और अब बताएं अपनी पसंद का कौन सा नगमा लेके आए हैं बीरबल बघेल जी आप।
0: मैं लेकर आया हूँ जिसमें किरण कुमार जी की जो फिल्म है जंगल से जंगल में मंगल।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: उस फिल्म का सॉन्ग मैं लेकर आया हूँ जिसके बोल हैं तुम कितनी खूबसूरत हो, ऐसा करके सॉन्ग है।
1: सॉन्ग क्या जी, सुपर हिट गाना था वो अपने टाइम का और मुझे बेहद पसंद है बीरबल जी। और आपकी और मेरी फरमाइश भी सेम ही है और बहुत ही प्यारा बड़ा खूबसूरत गाना है ये। तो आपकी इस पसंद को मनिष्का जी सुनाइए फिर और बीरबल जी की ख्वाहिश को पूरा कीजिए और आते रहिएगा बीरबल जी, आते रहिएगा प्रोग्राम में और बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ा व्यस्तता की वजह से नहीं जुड़ पा रहा था लेकिन अब जुड़ूंगा और जब भी मन करता है जुड़ जाता हूँ, सुनता रहता हूँ लेकिन रूबरू नहीं हो पाता हूँ। पर मुझे आज जो प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है, बाकी मैं रेडियो गाना पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है और आपकी जो बहुत ही प्यारी बातें जो फिल्मी जगत की हैं सुनकर के हम जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, अच्छा लगता है। ये जो मैंने अभी फरमाइश की है ये रेडियो हॉट स्टार के पूरे परिवार के लिए समर्पित रहेगा, जिसमें खासकर आदरणीय अमन सर जी, आदरणीय वंशिका जी, परमार साहब आपको, आकांक्षा जी और सोनी जी, और मैं तो कहता हूँ कि मेरे रेडियो हॉट स्टार के एक एक भाई बहन जो परिवार के हैं उन्हें, और इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे एक श्रोता भाई बहन को भी ये गाना समर्पित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बीरबल बघेल जी, और आपसे तो डेली मुलाकात मेरी सुबह शाम होती ही रहती है क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके मैसेज, आपके मैसेज भी आते हैं और आपकी बातें भी होती है हमारी व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ जी हाँ जी। और ये हमारे जो अमन सर जी हैं, हमारे जो अमन सर जी हैं जिनका प्रोग्राम है और जिनका रेडियो स्टेशन है, बड़े ही बहुत ही समझदार और अच्छे आदमी हैं ये, और इन्होंने अभी अभी अपने इस रेडियो चैनल को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दो आरजो को भी लेके आए, जैसे आरजे सोनी जी हैं, आरजे आकांक्षा जी हैं, ये भी इनकी एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और अगर यही कोशिश अगर उनकी कामयाब होती है तो ये हमारा जो रेडियो होस्ट आ रहा है ये शायद भी धरती से भी आगे चला जाए। तो बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे आरजे अमन जी और हमारी आरजे वंशिका जी, उनका पूरा साथ देती है दोनों मिलकर।
0: मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो देखने को मिला है मेहनत, कहते हैं मेहनत रंग लाती है, रंग लाती ही है और ये रंग दिखा दिया अभी अवार्ड लेकर के। मैं तो दिल से धन्यवाद दूंगा कि शानदार प्रस्तुतियां और एक से एक जो है आज के उसमें रेडियो हॉट स्टार में जो नया नया लेकर के आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रसारण जो प्रसार भारती है वहां पर भी संदेश पहुंचता है और उनके माध्यम से जो अवार्ड मिला है वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये कहूंगा कि दिन प्रतिदिन हमारा रेडियो हॉटस्टार हो, रेडियो गाना हो, और अमन सर का जो भी जहां भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हर क्षेत्र में वो तरोताजा उन्नति करें और विकास पथ पर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, काफी मेहनत है उनकी और पुरस्कार उनको मिला, लेकिन थोड़ा सा और हरिवंशिका जी को भी मिले पुरस्कार, दोनों को मिले, दोनों ही अच्छे आरजे सुपर आरजे थे, दोनों ने ही पुरस्कार लिया और ये हमारे रेडियो हॉटस्टार के लिए एक बहुत ही अच्छा और शुभ लक्षण है कि हमारे दोनों जो ये आरजे हैं सुपर हिट साबित हुए। और
0: पूरी मैंने हमारी बहन आरजे आदरणीय वंशिका जी हैं, तो उनका जो इंस्टाग्राम है उस पर मैंने वीडियो देखी, लाइक भी किया, मुझे बहुत खुशी हुई जिस वक्त मैं वीडियो देख रहा था और उसमें ये जैसे ही आवाज सुनने को मिली कि आदरणीय वंशिका जी को आवाज के लिए बुलाया गया, तो वाकई में मुझे भी बहुत खुशी मिली और ये अवार्ड मिलना चाहिए।
1: और ये ऐसा था, ये अवंशिका जी को नहीं, हमारे आरजे अमन जी को भी मिला और पुरस्कार मिला, लेकिन वो थोड़ा पिक्चर में नहीं आ पाया, तो कुछ उनकी भी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अमन जी का भी थोड़ा नहीं उसमें फीडबैक दे पाए। बाकी बहुत ही अच्छे दोनों आरजे हैं, ये आरजे अवंशिका जी और आरजे अमन जी। और ये अमन जी की अमन जी
0: आदरणीय श्रीमान जी, मैं तो ये वाकई में बता दूं कि जहां तक मैंने महसूस किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पुरस्कार की जो और भी घड़ी आएगी वो हमारे रेडियो हॉटस्टार के माध्यम से सभी आरजेस को मिलेगी, क्योंकि मैं सुन रहा हूं जहां तक कि जो नए आरजे भी आ रहे हैं और जो आदरणीय वंशिका जी और आदरणीय अमन जी, तो ये पहले से ही वाकई में वो तो खूबसूरत कहा जाए कि रेडियो हॉट स्टार का वो खूबसूरत सितारे हैं जिनसे रेडियो हॉट स्टार चार चांद कहा जाए लगा रहा है हम श्रोताओं के बीच में। और हम ये मैं फील करता हूं कि एक से एक शानदार जो आरजेस ढूंढ कर लाते हैं हमारे आदे अमन सर जी, वाकई में काबिले तारीफ हैं, क्योंकि आज की दुनिया में भीड़ बहुत है लेकिन इतनी भीड़ से एक को खोजना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये खूबी वो कहते हैं ये अच्छाई इनके अंदर है, हमारे सर के अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये अमन सिंह जी की ही मेहनत थी जो उन्होंने आरजे वंशिका जी को ढूंढा और चुना, और ये वंशिका जी ने पूरी मेहनत करी है अपने बीरबल जी, और उन्होंने भी बराबर का साथ दिया है उनका। और अभी आप देखिए पीछे उनके रमजान थे, एक महीना तक आए नहीं आरजे अमन जी, तो सारा प्रोग्राम आरजे वंशिका जी ने ही संभाला, पूरा रात को 10-10, 11-11 बजे तक प्रोग्राम किया सिर्फ आरजे अमन जी के लिए और अपने रेडियो स्टार के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हुई
2: जी। तो चलिए, आप काफी बातचीत हो गई और काफी मेहनत
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: मेहनत मेरा प्ले किया जा रहा है,
2: इतनी सारी तारीफ मुझे हजम
0: नहीं
1: हो रही। गाना मेरी पसंद का भी बीरबल जी, और आपकी और मेरी पसंद सेम है, तो सुनाइए वंशिका।
2: और आपसे बातचीत करके काफी ज्यादा अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा अपना बीरबल जी, और बातें तो आपसे होती रहती है, आपके पास मेरा नंबर भी व्हाट्सएप है, तो रोजी बातें करते हैं हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: ओके जी, तो चलिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, और अन्य श्रोताओं की भी खबर लीजिएगा और सुनवाइए मेरी पसंद का गाना। धन्यवाद।
2: ओके जी, धन्यवाद जी।

0: ये गाना अच्छा लगता है मुझे। और
1: बिल्कुल बिल्कुल वैशिका जी, आपका तो कहना ही क्या है। और आप अगर ये गाना अगर फीमेल वर्जन में होता तो आपके आपसे जरूर गवाया जाता, क्योंकि आपने बिल्कुल सेम गाना गाया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज है आपका। और बात हो रही है तो रेडियो से संबंधित, तो मैं अपने प्यारे मित्र गजानंद सोनकर को जो ये कहना चाहूंगा कि उन्हें
0: जन्मदिन की
1: मैं
0: बधाई।
1: जन्मदिन की हार्दिक और अपने दिल से बधाई देना चाहूंगा, और सभी मित्रों से ये भी कहूंगा कि हमारे गजानन सलोकार एक बहुत ही अच्छे और सुलझे विषय होता है। आज उनका जन्मदिन है, बहुत खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है, और मैं दिल से और तहे दिल से उनका साथ हूँ और उनके जन्मदिन मनाने में पूरा सहयोग देना चाहूंगा।
0: ओके जी, और यहाँ वीरवल जी देते बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमार सर जी और वंशिका जी आपको। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं वंशिका जी नमस्ते, और नमस्ते परमार सर जी आपको भी। निकला जी लिखते हैं ओ माय गॉड बहुत अच्छा गाना है, इससे ऐसे ऐसे गाने मैं गूगल से ढूंढ नहीं सकता बट बहुत प्यारे हैं, थैंक यू सो मच।
1: मनीषा शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए आपने। देखिए
0: बिल्कुल, तो परमार जी को जानकारी लेके आए हैं समय आप।
1: जी, बात चल रही थी अभी जीवन जी की और उनके पुत्र किरण कुमार जी की, तो एक श्रोता ने, हमारे दो श्रोता है, उन्होंने पूछा उसे किरण कुमार जी के बारे में बताइए कुछ, तो मैं ही बताना चाहूंगा कि किरण कुमार जी एक जाने माने भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेता हुए हैं, जिनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1953, और ये वो जहाँ जन्म हुआ था उस जगह का नाम था बम्बई। वे प्रसिद्ध अभिनेता जीवन के बेटे हैं, जिन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड में विलन की भूमिका भी निभाई। जीवन जी के बारे में बता रहे हैं, किरण कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1970 के दशक में, और उन्होंने हिंदी के साथ साथ गुजराती, भोजपुरी और टेलीविजन धारावाहिकों में भी बेहतरीन अभिनय किया है। उन्होंने जंगल की मंगल, तेजाब, खून भरी मांग, हद कर दी आपने और डरना मल्ला है जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका भी निभाई। उन्हें अक्सर गंभीर और सशक्त खलनायक या साइड कैरेक्टर के रूप में भी देखा गया है। उन्होंने टीवी धारावाहिक वाला एक साहेब बीवी और गुलाम, जिंदगी और कितनी मोहब्बत में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा प्रसिद्ध फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे से हुई थी। किरण कुमार को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और एक लंबे और बहुत आयामी कैरियर के बावजूद आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और अपने सादगीपूर्ण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। और उनके जो पत्नी थी उनका नाम था सुषमा वर्मा, उनकी बेटी भी हुई है, उनका बेटा हुआ जी शौर्य कुमार। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपको किरण कुमार जी के बारे में बता रहा था। तो अभी अनुष्का जी देखेंगे कि कौन
0: अगले
1: सा
0: गाना सुनवा रही हूँ आप सभी को, इस संदीप सुतार की पसंद है गम गई गम गई गम गई, मतलब ये गाना मैं पहली बार सुन रही हूँ। अनोखी अदा मूवी का गाना है, आशा भोसले जी की आवाज में, गुम गई मेरे ख्याल से इस गाने के बोल हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या गुम गया है क्या नहीं गुमा है, और ढूंढते हैं जो गुम गया है।

0: सबसे प्यारा गाना सुनने को मिला है गुम गई गुम गई गुम गई। और ये गाना सुनवाया हमें किन श्रोताओं ने, यही बता देती हूँ आपको। ये पसंद थी मेरे पास संदीप सितार जी की। तो संदीप जी आपका गाना प्ले हो चुका है। और यहाँ पर अमीना खान जी लिखती हैं, अम्मी वंशिका जी हमें वहीदा रहमान जी की जानकारी चाहिए, वहीदा रहमान जी।
1: जरूर जरूर जरूर अमीना खान जी बताएंगे।
0: और आर के रवि जी लिखते हैं, स्पेशली डेडिकेट टू बॉलीवुड गूगल परमार जी, दिल के हर सवाल का जवाब रखता हूँ मैं, बॉलीवुड के हर किस्से का हिसाब रखता हूँ, सर्च करो तुम कोई भी फिल्म या गाना, मैं हर स्टार की खबर बेहिसाब रखता हूँ। ये आर के रवि जी ने आपके लिए लिखा है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छी शायरी करने के लिए, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ जो आप इतनी खूबसूरत प्यारी शायरी करते हैं। तो हमारे एक मित्र
0: शानदार सॉन्ग लिखते हैं बीरबल जी। और निकलस जी लिखते हैं डेनमार्क से, वेरी वेरी ओल्ड गाना। जी हाँ बिल्कुल ओल्ड गाना है, बट बहुत ही प्यारा गाना है। और बताइए फरमाइश।
1: तो हमारे एक मित्र अभी जुड़े हैं मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ कोई धीरेन्द्र शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा आप सबके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आर जे अमन जी के बारे में बताइए कुछ। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, जवाब तो देना ही पड़ेगा।
0: तो आप फिल्म की जानकारी के साथ हमारी जानकारियां मिला रहे हैं, वाह।
1: अब श्रोता पूछ रहे हैं विश्वास जी, तो बताना ही पड़ेगा। आरजे अमन जी भारत के जाने माने रेडियो जॉकी रहे हैं और कहानीकार भी हैं, लेखक और पॉडकास्ट के होस्ट भी रहे हैं हमारे आरजे अमन जी। अलग अलग रेडियो चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनका अंदाज अपना रहा है, उनकी कहानियां भी काफी पसंद की जाती है। पहचान के बारे में बात करते हैं तो मैं अपनी बेहतरीन

0: लेखक भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं और स्वतंत्र क्रिएटर के रूप में भी सक्रिय रहे हमारे आरजे मुनि। तो इनकी कुछ खासियत थी जो मैंने आप अपने श्रोताओं के साथ साझा की, और हमारे जो मित्र धीरेन्द्र शर्मा जी है उनको अपनी बात का जो आप मिल गया होगा।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: अगला गाना मैं प्ले करूंगी मनीषा शर्मा जी का, लिखती हैं वंशिका जी वाला गाना, सुनवा दीजिएगा तो जरूर आपके गाने को प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर किसी को गाना पड़ेगा।

गाना गलत हो चुका है, मतलब जो उन्होंने गाना मुझे भेजा था वो गाना ये प्ले नहीं है, तो जल्द ही मैं आपको दूसरा गाना प्ले करके बताती हूँ, जो कि गाना हमें मनीषा शर्मा जी ने भेजा था। जब तक यहाँ पे कुछ कुछ फीडबैक है मेरे पास जिन पर नजर डाल सकती हूँ मैं, जो कि निकलेश जी ने लिखा है कि गाना बहुत ही प्यारा लगा। जी हाँ, वैसे ये वाला गाना भी बहुत प्यारा है, बट उन्होंने जो भेजा है वो थोड़ी देर में आ रहा है, यानी कि थोड़ी देर में मेरे पास पहुंच जाएगा, तो इस गाने को भी मैं जल्द ही प्ले करती हूँ। और यहाँ पे आर के रवि जी लिखती हैं, दीदी ओके जी, मैं कोशिश करूँगी आपके गाने को प्ले करने की भी, क्योंकि समय की नाराजगी अगर नहीं रही तो आराम से आपका गाना प्ले हो जाएगा। तो मैं जल्दी से बस मनीषा जी का गाना प्ले करती हूँ। और निकलेश जी लिखते हैं, वी कल फो आर जे अमन जी, आर जे प्रमा जी। ओके ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गई मैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ गई हूँ। और यहाँ पे अमीना खान जी लिखती हैं, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला। बीरबल बघेल जी लिखते हैं, शानदार पसंद नहीं है हमारी मनीषा बहना जी की। जी और मनीषा बहना जी की पसंद जो है अभी वो आने वाली है। और यहाँ पे मेरे पास मैं देख सकती हूँ कि गजानन सरकार जी को बहुत सारी विशेष आ चुकी हैं, तो उनको मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अगला गाना जैसे ही बोला मनीषा जी का मैं प्ले कर रही हूँ।

0: विक्रम भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अभी तक विस्की शुरू नहीं।
1: बस यार यूं ही समझ ले, अभी तक नशे की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं।
0: पत्रकार जो ठहरे, पत्रकारी का नशा ही कुछ और होता है। एनीवे आई विल ड्रिंक फॉर यू।
1: चीयर्स। लो सुनो, तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारी ये चीयर्स पसंद नहीं है।

0: प्यार का एक नया गीत है। मनीषा शर्मा जी, आपने बहुत ही प्यारा गाना हमें सुनवाया और निकलेस लिखते ही गाना भी अच्छा लग रहा है सुनने में। मनीषा जी लिखती है, मनीषा जी आपने मेरे गाने को प्ले किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपको भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। और यहाँ फीडबैक है क्या, यहाँ भी नज़र डाल लेती हूँ मैं। यहाँ पे राजेश कुमार जी लिखते हैं, वंशिका जी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है, लाजवाब पसंद है। गीता शरण जी जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी बिहार से, लिखते हैं मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। निखिला जी लिखते हैं,
1: गीता
0: नॉटर
1: शरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपका
0: थैंक यू
1: हम
0: सो
1: तहे
0: मच।
1: दिल से स्वागत करते हैं।
0: निखिला जी भी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, हर जी वंशिका जी शुक्रिया। अनिल मेहता जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी, वेलकम है। निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग लिखते हैं। और ओम नारायण जी लिखते हैं, किशनगंज बिहार से हम भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। प्रीति रायदास जी जुड़ चुकी हैं, प्रीति रायदास जी सिवान डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हैं, लिखती हैं, हेलो वंशिका मैम। प्रीति जी आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: बहुत बहुत वेलकम प्रीति जी, आपका बहुत
0: और यहाँ पे रणवीर
1: बहुत
0: सिंह
1: हम
0: जी
1: तहे दिल से आपका
0: वेलकम करते
1: शुक्रिया
0: हैं,
1: अदा करते हैं और वेलकम करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी।
0: और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं, हम भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। रणवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आज तो काफी ज्यादा लिसनर्स हैं, आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी।
1: रणवीर कुमार जेठालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए,
0: आज वंशिका जी
1: और अपनी
0: सवाल
1: पसंद का
0: पूछिए
1: कोई चुलबुला गाना भी भेजिएगा। और इससे पहले वंशिका जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा,
0: जी। और एक
1: हमारी
0: सवाल मैं
1: जो
0: पूछूंगी,
1: हमारे आरजे आमना खान जी हैं, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि वहीदा रहमान जी के बारे में बताइए। तो मैं यही बताऊंगा कि 3 फरवरी 1938 को एक बच्चे का जन्म हुआ था जिनका नाम बाद में रखा गया वहीदा रहमान। वो एक भारतीय अभिनेत्री रही, हिंदी सिनेमा की महानतम और सबसे कुशल अभिनेत्राओं में से मानी जाने वाली वहीदा रहमान ने 5 दशकों से अधिक के अपने कैरियर में 90 से अधिक फीचर फिल्में की और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें भारत के नागरिक पुरस्कारों में जैसे पद्मश्री 1972 में मिला था और पद्म भूषण 2011 में, और 2021 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आमना खान जी, आप सुन रही ही होंगी, उनका जन्म हुआ 3 फरवरी 1938 में, और अब उनकी जो उम्र है वो 88 साल की है, और तमिलनाडु में हुई थी जी ये इनका, और जगह का नाम था चैंगलपेट, ये ब्रिटिश के अंदर आता था उस टाइम। उनका पेशा है अभिनेत्री, और अब तक वो जो सक्रिय रही हैं वो फिल्म जगत में, तो 1955 से लेकर अब तक वो सक्रिय है। उनके जीवन साथी का नाम था शशि रेखी, वो विवाह 1974 में हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी 2000 में। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको वहीदा रहमान जी के बारे में बताई, और रहमान जी की और कुछ बातें लेता हूँ मैं तो बताऊंगा। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया, रोजुल मराई 1955 में से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी उन्होंने, और फिल्म निर्माता गुरुदत्त के साथ उन्होंने प्यासा फिल्म की थी 1957 में, कागज के फूल आई थी 1959 में, और चौधरी का चांद उन्होंने गुरुदत्त जी के साथ की थी 1960 में, और साहेब बीबी और गुलाम 1962 में आई थी, और जैसी फिल्मों में उन्होंने काम करके अपनी प्रसिद्धि कायम रखी। और उसके बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म आई थी जी एक गाइड 1965 में, उसमें उन्होंने अपनी की बहुत तगड़ी छाप भी छोड़ी और उसे उन्हें काफी सराहना मिली थी, जिसके लिए उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर थ्रिल अवार्ड लिया था, और नीलकमल जो 1968 में आई थी वंशिका जी, जिसमें था बाबुल की दुआएं लेती जा। तो उसके बाद उनकी फिल्म आई राम और श्याम 1967 में, एक ड्रामा फिल्म थी, और इसके बाद एक खामोशी आई थी, वो ड्रामा फिल्म थी जो 1969 में आई थी, जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों में महकती खिलती। और क्राइम ड्रामा फिल्म आई थी नेरे रेशमा और शेरा 1971 में, एक कुलमाता महिला के किरदार को निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको साथ साझा करता था मीना खान जी, और आपने पूछा था इसलिए मैंने इस बात का जवाब भी दिया। तो मैं यही पूछना चाहूंगा, तो ये गाना आया था जो वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया था, फिल्म धरती से। उस फिल्म में जो वहीदा रहमान जी पर गाना फिल्माया गया था, उस गाने के वर्ड आप लिख के भेजिए, और फिर जो श्रोता सबसे पहले भेजेंगे मैं उससे बातें भी करूंगा। तो इस प्रश्न को फिर सुन लीजिए। ये धरती फिल्म आई थी जिसमें वहीदा रहमान जी और राजेंद्र कुमार जी थे, उन पर फिल्माया गया एक गाना था, बड़ा ही खूबसूरत गाना था। उस गाने के बोल लिखिए और अपना आंसर दीजिए, और जो सबसे पहले आंसर देगा उससे मैं बातें भी करूंगा अभी। क्यों नमस्कार।
0: तो चलिए ठीक है, गानों की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे अमीना खान जी लिखती हैं, ओ हो मेरी तरक्की हो गई, मैं स्टूडेंट से अच्छे नंबर से पास होकर आरजे बन गई। मुझे आरजे प्रमाणजी ने आरजे अमीना खान कहा है गलती से। जी, गलती से आपके मुंह से निकल गया था, पर बहुत सही निकल गया था। जी, तो अगले गाने की तरफ चलते हैं जल्दी से। और अगले गाने की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये गाना मेरे पास पहुंचा हुआ है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए इस वाले गाने को प्ले करते हैं। जो कि पसंद मेरे पास किनकी है वो भी बता देती हूँ। जी, और प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा आप सभी। और ये वाला गाना किनका है, देर ना हो जाए, कहीं एक सेकंड मैं चेक करके बता देती हूँ आपको ये किनकी पसंद थी। राहुल पासी जी की पसंद थी, देर ना हो जाए। तो चलिए, देर नहीं हुई है, गाना हमने प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

0: तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत ही खूबसूरत गाना था ये और बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मेरे दिल पर छा गया। तो दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं विजय कुमार धीवान जी, वो रेडियो स्टार पर नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने पर्सन मुझे मैसेज करके कहा, और रेडियो स्टार सुन रहे हैं, तो मुझे ये कहा उन्होंने कि अभी आप थोड़ा सा मुझे शाहरुख खान जी के बारे में बताइए। तो दोस्तों, चलो मैं अपने मित्र को तो बताऊंगा, साथ साथ मैं अभी अपने श्रोताओं से भी शाहरुख खान जी के बारे में बातें करना चाहूंगा। तो शाहरुख खान जी का जो जन्म हुआ था वो 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली की में हुआ था, और उनके कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी, वो अपने बल पर ही फिल्मी दुनिया में आए। और शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और माता लतीफा फातिमा एक मजिस्ट्रेट रही थी। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए किया। इसके बाद उन्होंने अभिनय करने से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में दाखिला ले लिया, लेकिन अभिनय में रुचि लेते हुए उन्होंने इसे कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं किया। कम उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, जिससे उनके जीवन में काफी संघर्ष आया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन कभी कम नहीं हुई। उन्होंने टेलीविजन सीरियल से अपनी शुरुआत की। शाहरुख खान ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में टीवी धारावाहिक से की। उनका पहला प्रसारित होने वाला चर्चित सीरियल आया था फौजी, जो 1989 में चला था अपने DD1 पर, जिससे उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने सर्कस फिल्म एक सीरियल आया था, उसमें भी काम किया। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था 1992 में। उनकी सबसे पहली फिल्म आई थी दीवाना, जो ऋषि कपूर जी और के साथ थी, जिसके लिए उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। डार्क और एंटी हीरो भूमिकाएं शुरुआती दौर में उन्होंने बाजीगर में की थी, जो 1993 आई। डर फिल्म में उन्होंने सनी देओल के साथ 1993 में फिल्म आई थी, और अंजाम 1994 में आई थी, जिन्होंने उन्होंने नकारात्मक विलेन की भूमिकाएं की थी। अपने उस अभिनय की एक अद्भुत छाप छोड़ी थी उन्होंने सभी दर्शकों के दिल में। रोमांटिक हीरो के रूप में उन्होंने 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की उनके कैरियर को हमेशा के लिए बदल दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, और कभी खुशी और कभी गम जैसी फिल्मों से उन्होंने देश विदेश में रोमांस का परिणाम रखा, और उन्होंने स्वदेश फिल्म चक दे इंडिया और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि वो सीरियस और गंभीर भूमिका भी कर सकते हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद उन्होंने साल 2023 में पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी, जो उन्होंने सिनेमा घरों में धमाकेदार वापसी के साथ बहुत ही लोकप्रियता भी हासिल की। जवान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। विवाह हुआ था शाहरुख खान ने 25 अक्टूबर 1991 को गोरी छिब्बर से पारंपरिक रूप से कोर्ट मैरिज की, लेकिन इसके लिए उनके घर वाले इस बात से सहमत नहीं थे। उनके 3 बच्चे हैं, आयरन खान, सुहाना खान और अब राम खान। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, शार्क और गौरी ने अपनी खुद की फिल्म निर्माण और VFX कंपनी रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट का भी उद्घाटन किया। कलकत्ता के नाइट राइडर्स केकेआर वे आईपीएल की प्रसिद्ध क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक भी है, यानी उनमें उसका पार्टनरशिप भी है। उन्हें पद्म श्री अवार्ड भी मिला था 2005 में। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किए और अभी तक दुनिया में कामयाबी से चल रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी विजय जी, आपको मैंने बताई और अपने प्यारे श्रोताओं को भी बताएं बताई। तो सभी मेरे प्यारे मित्र, मुझे इससे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उनकी फिल्म आई थी एक,
1: बना दी जोड़ी।
0: रब ने बना दी जोड़ी, उस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना कौन सा था? ये आंसर दीजिएगा आप मुझे और मैं उस श्रोता से बात भी करूंगा।
1: मैं सवाल बदल सकती हूँ
0: हाँ बदलिए।
1: जी। आप सभी को बताना है कि रब ने बना दी जोड़ी मूवी में शाहरुख खान के दो रोल थे, यानी कि दोनों ने दो तरीके के किरदार निभाए थे। तो वो दोनों किरदारों के नाम क्या था? वो उन किरदारों का नाम मुझे लिख के आप सभी रेडियो हॉस्टा के मतलब व्हाट्सएप नंबर 8404841232 पे भेज दीजिए दोनों किरदारों के। और जो पुराना है जवाब सवाल, उसका जवाब हमारे पास पहुंच चुका है। सबसे पहला जवाब है मेरे पास राजेश जी का सही है, उसके बाद हमारे पास विष्णुचंद्र जी का सही है, और उसके बाद में निकलस जी का है। तो चलिए कॉल मिलाते हैं हम इनको, किनका नाम, जिनका नाम है राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी से हमारी पहले बातचीत नहीं हुई है, अभी हुई है, तो चलिए बातचीत करते हैं। और भी बहुत से लिसनर्स का आंसर सही है बट गलत है, तो जो सही है उनसे बातचीत हो रही है। हेलो
0: हेलो राजेश कुमार जी,
2: नमस्कार
0: नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, आपसे मेरे का दूसरी तीसरी बार बात हो रही है मेरी आज, पहले भी आपसे बात हो चुकी है मेरी और बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करते हुए मुझे। क्या कर रहे हैं इस समय आप?
2: कर
0: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप मेरा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बताइएगा जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका क्या जवाब था, यानी क्या आंसर था?
1: जवाब बता दीजिए राजेश कुमार जी।
2: बता रहे हैं हम तो भूल गए थे कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि
0: चलो आ
2: अच्छा
0: गया, चलो याद कर लीजिए।
2: मौसम भीगा भीगा है
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: ज्यादा
0: बिल्कुल बिल्कुल, धरती फिल्म का सुपरहिट गाना था ये। और आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे राजेश जी, वो भी बता दीजिए।
2: यही गाना सुनवा दीजिए, गाना बहुत बढ़िया है।
0: चलो चलो चलो वंशिका जी देखिए और सुना दीजिए अपने राजेश जी को। और बहुत अच्छा लगता है राजेश जी आपसे बातें करके, और आपके प्रोग्राम में हम जुड़ते हैं, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे छोटे भाई साहब मेरे प्रोग्राम से जुड़ गए हैं, और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं।
1: तो
2: हैं जी, लेकिन आपके प्रोग्राम में मैं जरूर जुड़ना चाहता हूँ।
0: नहीं मैं भी यही देखता रहता हूँ, हमारे राजेश भाई छोटे भाई आए नहीं, क्या बात हो गई, इंतजार करता रहता हूँ। एक हमारी वो अमीना खान बहन जी हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे बातें करती हैं हमसे, वो भी बहुत अच्छी तरह बातें और बहुत अच्छे फीडबैक लेके आती हैं।
1: जी, तो गाना मैं प्ले कर देती हूँ, ये मौसम भीगा भीगा है, धरती मूवी का गाना।
0: तो राजेश जी सुनिए अपनी पसंद का गाना और एंजॉय कीजिए,
1: ओके
0: मिलते हैं
1: जी,
0: फिर। धन्यवाद
1: धन्यवाद जी।
0: जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।

बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला। ये मौसम भीगा भीगा है। और यहाँ पे तो आंसर्स भी आ चुके हैं मेरे पास। सबसे पहला आंसर आर के रवि जी का पहुंचा हुआ है, और उसके बाद राहुल पासी जी हैं, अमीना खान जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं। तो सबसे पहले हैं आर के रवि जी। तो आर के रवि जी आपसे बातचीत करते हैं।

0: की राजनीति की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आर के रवि
0: नमस्ते
1: जी, आप आए और
0: आनंद
1: बहुत
0: जी।
1: अच्छा लगा मुझे। और मैं तो आप तो मेरे सामने ही बैठे हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरे सामने बैठकर बातें कर रहे हैं।
0: सर, हर वीक आपसे बात करना है, कभी यही कोशिश में रहते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप बातें करते हैं। आपसे आपसे शायद दूसरी बार बात हो रही है आज,
0: तीसरी बार
1: तीसरी बार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आर के रवि जी, आप बात करने के लिए। आपके विचार बहुत ही अच्छे होते हैं और आपकी बातें बहुत ही खूबसूरत और प्यारी होती हैं, और गाने भी अपनी पसंद के बहुत प्यारे प्यारे लेकर आते हैं आप।
0: सर जी,
1: क्या कर रहे हैं इस समय आप?
0: समय तो सर मैं अपने दुकान में बैठे हुआ था।
1: अच्छा, दुकान में बैठे हुए हैं, और दुकान में बैठे हुए प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, आरजे परमार जी से बातें भी कर रहे हैं।
0: बातें भी कर रहे हैं, सारा काम एक साथ हो रहा है। जी
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए रवि जी।
0: जी हमें भी सर जी।
1: अच्छा, और
0: और
1: ये
0: ये जो अभी आपने उन्होंने आपने शायरी लेके भेजी थी ना आर के रवि जी, वो मतलब आरजे परमार जी को काफी अच्छी लगी थी वो शायरी।
1: शायर हैं आप
0: मैंने
1: ऐसे?
0: उनके लिए स्पेशल मैंने उनके लिए बनाया था। मैं सोचा कि पूरे वीक में, कि जब अब आएंगे संडे को सर, तो संडे को जरूर सुनाऊंगा मैं
1: और आपकी
0: उनको।
1: शायरी के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका। आप बहुत अच्छे और खूबसूरत, प्यारे और बढ़िया शायर हैं आर के रवि। बहुत ही खूबसूरत लाइनें होती हैं आपकी, बहुत ही ऐसी लाइनें होती हैं जो दिल पर सीधी अटैक करती हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी बातें करते हैं आप, और शायरी का तो आपका माशाल्लाह कह रहा ही क्या। और
0: हमारी
1: आप?
0: दीदी की तबीयत भी कई दिनों से खराब है, खांसी
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हुई
1: थोड़ी
0: है,
1: थोड़ी
0: खांसी
1: रहती है उनकी
0: खोंसी
1: तबीयत, थोड़ी सी नासाज रहती है।
0: होती है। जी वैसे मेरी तबीयत थोड़ी अब पहले से बेहतर है। आप सभी की कृपा है, आप सभी का प्यार है, जो कि मतलब तबीयत को ठीक कर देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शायद
1: बिल्कुल,
0: शायद हमारे अजय भगत जी और पार्वत जी नाम के लिए ज्यादा दुआ मांग लिया, उनको भी काफी हो गया, उनको भी सेम प्रॉब्लम है।
1: ओहो, अजय जी को भी?
0: जी
1: ओहो,
0: कल आर के रवि जी का जन्मदिन है। जी
1: जन्मदिन है आपका कल? वाह वाह, अभी एडवांस में मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा।
0: सर,
1: बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बर्थडे के बारे में सुनकर, बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा हूं मैं।
0: प्रफुल्लित। ओके जी, तो आर के रवि जी जो आंसर था वो बता दीजिए।
2: रबड़ी बनाते जोड़ी में फर्स्ट रोल जो था उनका सुरेंद्र सैनी नाम था, और सेकंड में राज। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और गाना कौन सा है आपकी पसंद का आर के रवि जी?
2: गाना तो सर मेरे आज मेरे दो चॉइस है, एक 90s का, एक उससे भी ओल्ड है 70s का। मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा मैं सुनूं।
1: कोई सा सुन लीजिए, जो सा सुनेंगे वो सुना देंगे आपको।
2: ओल्ड में सुनते हैं सर, आपको भी शायद पसंद आ जाए।
1: बिल्कुल
2: मरते
1: बिल्कुल,
2: दम तक मूवी का सॉन्ग है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गाना
0: छोड़ेंगे
1: लाया। ये गाना मेरी पसंद का भी है और आपकी पसंद का तो है ही है, तो काफी मिलती जुलती फरमाइश रही मेरी और आपकी, अच्छा भी लगा। तो ये हमारी वंशिका जी, देखिए फरमाइश सुनाइए हमारे आर के रवि जी की।
0: ओके
1: और ये
0: जी।
1: हमारे आर के रवि जी और है, या अमीना खान जी हैं, या हमारे सर्वेश भगत भाई साहब हैं, या हमारे बीरबल बघेल जी हैं, हमारे टीचर, वो भी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। इन सभी की फरमाइश नंबर वन और बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी आर के रवि जी का पसंद का गाना सुनाएंगे आर के आरजे वंशिका जी।
0: ओके जी, तो चलिए सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आर के रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, छोड़ेंगे ना हम साथ हो साथ ही मरते दम तक। गोपाल पाटीदार जी लिखते हैं कि प्रमा सर जी मोहम्मद अजीज जी के बारे में जानना है, जानकारी निकाल के लाइए। और
1: जरूर
0: राहुल
1: बताएंगे हमारे पाटीदार भाई साहब, जरूर
0: और
1: देता
0: राहुल वासी जी
1: हूँ।
0: कहते हैं प्रमा जी आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है, हर संडे को सुनता हूँ, तीसरी बार सुन रहा हूँ, और सर्वेश भगत जी की आवाज भी बहुत ही प्यारी है। अजय भगत जी लिखते हैं आर के रवि जी की पसंद का गाना बहुत ही लाजवाब रहा
1: बहुत
0: है।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो बोलिए प्रमा जी कौन सी जानकारी लेके आए हैं आप?
1: बस यही पूछा हमारे मित्र ने कि
0: मोहम्मद अजीज जी
1: कौन
0: के बारे में पूछा है गोपाल पाटीदार जी ने।
1: गोपाल पाटीदार जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो मोहम्मद अजीज जी हुए हैं, जो सिंगर थे, इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1954, कलकत्ता में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में हुआ करता है विश्व में। उनका जो असली नाम था वो सैयद मोहम्मद अजीज उर्फ नबी था, और उन्हें प्यार से मुन्ना भी कहा जाता था। उन्हें जो प्रेरणा मिली वो बचपन से महान गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक रहे थे वो, और उन्होंने उनकी शैली काफी प्रभावित करती थी, और वो मोहम्मद रफी जी के स्टाइल में ही गाने गाया करते थे। तो उन्हें पहला ब्रेक मिला था, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गाने, और बंगाली फिल्मों से भी की थी उन्होंने पहली शुरुआत। इसके बाद वे मुंबई आ गए थे, बॉलीवुड में पहचान बनाई थी उन्होंने। संगीतकार अनु मलिक के निर्देशन में फिल्म मर्द 1985 का गाना गाकर उन्हें रातों रात मशहूर हो गए थे। उन्होंने अभिनय अमिताभ बच्चन, गोविंदा और ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज भी दी। उनके प्रसिद्ध गीतों में माई से सहारा ना मिला, फिल्म बरसात की एक रात से, और बटवा हमार ले लो, और कई लोकप्रिय युगल गीत डुएट भी गाए उन्होंने, जो लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ थे। हिंदी के अलावा उन्होंने ऑडियो
0: आर्य
1: और
0: बहुत भाषाओं
1: बंगाली
0: में गाए
1: भाषाओं
0: हैं।
1: में भक्ति गीत और भजन भी गाए। उनका निधन हुआ था 27 नवंबर 2018 को, मुंबई के एक दिल का दौरा पड़ा था और उनको उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही आप उनके बारे में कुछ और बातें जानना चाहें तो वो भी पूछिएगा मुझसे। तो वंशिका जी, ये कुछ बातें थी हमारे मोहम्मद अजीत जी के बारे में। अब वो हमारे श्रोता को एक प्रश्न पूछा, शायद भूल गए श्रोता, एक बार फिर पूछ लीजिए।
0: जी जवाब तो आ गया है उसका, और यहाँ पे मेरे पास गाने पहुंचे हैं जो कि अमीना खान जी ने गाना भेजा है मुझे।
1: तो अमीना
0: तो
1: खान जी से हम बात करना चाहेंगे पहले। हाँ
0: अमीना जी से बातचीत जरूर करेंगे, बट इन्होंने लिखा है कि नहीं मैं बातें नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो बिजी है उस समय। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले कर देती हूँ मैं जो कि कवारी टाइप का सॉन्ग है, तो चलिए सॉन्ग प्ले करती हूँ।
1: तो थोड़ा सा उदास महसूस कर रहा हूँ कि हमारी श्रोता अमीना खान जी से बातें नहीं हो पाई मेरी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी उनकी पसंद का गाना सुनते हैं।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बेहतरीन पसंद है। और यहाँ पे राहुल पासी जी कहते हैं, है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं, गम नहीं, गाना बहुत प्यारा लगा। गोपाल पाटीदार जी लिखते, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अमीना खान जी कह रही हैं कॉल कर सकते हैं, तो
1: ठीक
0: चलो
1: है मनीषा जी,
0: कॉल कर
1: अमीन
0: लेते हैं।
1: खान जी को कॉल करते हैं पहले
0: अमीना खान जी से कॉल
1: और
0: करके
1: उनकी
0: जल्द ही शो
1: पसंद
0: को
1: का।
0: एंड भी कर सकते हैं।
1: नहीं नहीं अभी चल रही तो अभी 5-10 मिनट और चलेगा शो।
0: जी हाँ बिल्कुल, 5:30 तक एंड करते हैं। हेलो,
1: सलाम वालेकुम अमीना खान जी, कैसी हैं आप?
2: वालेकुम सलाम जी। अलहमदुल्ला मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं आप सर?
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अमीना खान जी, मुझे ये सुन के बहुत ही ज्यादा महसूस हुआ कि बिटिया बीमार है, और बिटिया के
2: जी
1: बारे
2: जी
1: में
2: जी
1: सुन के थोड़ा सा दिल भी उदास सा हो गया।
0: बट आप कैसी हैं? वो ठीक
2: नहीं
0: है,
2: नहीं मैं फौरन लेके ना उसको हॉस्पिटल गए, फिर अभी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ही किया उस वक्त, मैं और भी वजह से थी। पता है आपको, एक खूबी और है वंशिका जी में,
1: बताइए।
2: वो समझदार काफी है, समझदार काफी है।
1: देखो
2: ये मतलब ये खूबी होना आसान हर किसी के बस का नहीं है। उन्होंने उस वक्त बहुत अच्छे से ट्रीट किया, क्योंकि ना लिटरली रो रही थी उस वक्त मैं, और मैं सॉन्ग सुन रही थी। मैंने आरती वंशिका जी को मैसेज किया कि मैं बहुत सैड हूँ, तो उन्होंने जो संभाला उस वक्त मुझे, तो वो काबिले तारीफ था। यानी वो बहुत समझदार है।
1: देखिए
0: मैंने
1: देखिए
0: क्या करा? मैं तो
1: ऐसा है अमीना खान जी,
2: कंफ्यूज
1: ये मेरी बड़ी प्यारी बेटी है और ये बहुत इमोशनल
2: हूँ।
1: भी है और आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। ये बताया था इसने मुझे कुछ
0: अच्छा, मैंने वैसे
1: ऐसा
0: ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? मुझे मुझे समझ नहीं आया। मैंने मैंने तो कुछ नहीं।
2: हाँ वो इतने प्रोग्राम में परेशान हो गई कि अमीना जी को क्या हुआ। उन्होंने संभाला बड़े अच्छे से मुझे उस वक्त। फिर मैंने फिर लास्ट में कहा कि नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ, और तुरंत मतलब 1 घंटे के बाद भी सारा कुछ और बेहतर कर दिया ऊपर वाले ने। तो मैं बोली हुई देखो, मैं ना किसी को कभी बोलती नहीं हूँ, सडनली मैंने आरजे वंशिका जी को मैसेज कर दिया उस वक्त।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा।
0: थैंक यू सो मच कि
1: बाकी
2: आपने मेरे को।
1: मुझे
2: वही वही इनकी एक खूबी और जानने को मिली ना, कि माशाल्लाह समझदार है काफी।
1: बिल्कुल
2: शुक्रिया,
1: बिल्कुल
2: बहुत
1: जी
2: बहुत
1: बिल्कुल।
2: शुक्रिया।
1: और दूसरे अमीना खान जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे भी बड़ा ही धक्का लगा था, बहुत ज्यादा फील हुआ था कि अमीना जी की बिटिया जो है काफी नासाज है, तो
2: जी।
1: मुझे
2: अरे
1: लग
2: नहीं,
1: रहा
2: मैंने
1: था।
2: दवा बात करते करते, मैं प्रोग्राम सुनते सुनते गई, फिर इसको लेकर आया हॉस्पिटल से, फिर दवाई वगैरह लेके ठीक हो
0: अब
2: गई।
0: अच्छी
2: अभी
0: बात है कि
2: माशाल्लाह
0: वो
2: मुझे
0: तंदुरुस्त हो गई।
2: बबीता जी के बेटे की तबीयत सुना, उनकी ना आवाज मुझे भी उस वक्त बड़ी सी वो लगी थी। वो हमेशा खिलखिला के बात करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब है, पता नहीं वो आ भी नहीं रही है, ऊपर वाला ठीक
1: हाँ
2: करे
1: चलो
2: उनके
1: चलो
2: मैं बिल्कुल
1: जी,
2: उनसे
1: ऊपर
0: मैं अगर समय
1: वाले
0: मिलेगा ना
1: से हम
0: उनसे
1: भी
0: बात
1: दुआ
2: करूंगी,
1: करेंगे कि बबीता जी के साथ कोई मिस हैपनिंग
0: उनकी
1: ना हो,
0: उनकी बेटे
1: और
0: बेटे
1: उनके
0: कुछ नहीं करे,
1: बेटे
2: बेटे की
1: उनके
2: बेटी
1: उन
2: की तरह से।
1: उनका
2: हाँ
1: एक ही
2: जी,
1: बेटा है जी
2: और वालेकुम
1: स्कूल।
2: सलाम निकलेश जी को। उन्होंने भी उस दिन पूछा, बट मैं बाद में सुनी थी, मम्मी के पास थी ना, तो मैंने सुना नहीं लास्ट का, फिर मैंने बाद में सुना
1: ये
2: था।
1: हमारे जो निकलेश जी हैं
2: फिर एक
1: बहुत
2: बार अभी उन्होंने भी पूछा, उनके लिए थैंक यू। हाँ
1: बिल्कुल बहुत ही प्यारे लिसनर हैं हमारे
0: आप सभी
1: अमीना खान
0: काफी
1: जी,
0: ज्यादा प्यारे हैं, एक दूसरे की इतनी
2: और
0: फिक्र करते
2: सारा
0: हैं।
2: ऐसा ना एक लगाव होते जा रहा है धीरे धीरे
1: बिल्कुल
2: धीरे। यानी
1: बिल्कुल
2: नाम भी याद हो जा रहा है, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये ऐसा।
1: एक ही परिवार की तरह रहते हैं जी हम अमीना खान जी, भाई बहनों की तरह, और बहुत
2: जी
1: अच्छा
2: आप
1: लगता
2: लोगों
1: है।
2: की
1: अब
2: मेहनत
1: दुख
2: है
1: भी होता है, और अब बबीता
2: आप।
1: जी के बारे में मैं सुन के भी दुख हुआ, वो हमेशा भी मुझे
2: हाँ बस वो वापिस आए तो पता चले। जी मैं उनसे
1: गुरु
2: बात
1: जी
0: जरूर करूंगी, अगर समय
1: कैसी है,
0: मिलेगा तो मैं उनसे
1: और
0: बातचीत करके
1: गुरु जी
0: पूछूंगी।
1: कहती है उनका
2: हाँ
1: बेटा एक
2: बिल्कुल।
1: ही बेटा है उनका
2: और
1: सूरज
2: एक
1: नाम
2: चीज
1: से।
2: वंशिका जी,
1: हाँ जी बोलिए।
2: जी सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगी। हाँ मुझे ना अभी, मैं अमन जी से बात किया था, तो अमन जी ने कहा कि आरजे वंशिका जी बहुत टैलेंट है, तो मैं कभी ना आपको फुर्सत में कॉल करके पूछूंगी। वो मैं यूट्यूब चैनल ना सोच रही हूँ, यूट्यूब चैनल का कुछ, तो आपसे ज्यादा जानकारी रखती है,
0: जी
2: तो
0: हाँ
2: मुझे ना मुझे आपसे जानकारी लेनी थी।
0: ओके ओके, जरूर लीजिएगा जी। हम तो खुला पिटारा है, तभी भी आप फोन कीजिए, हम जरूर बातचीत
2: जी
0: करेंगे।
2: आप बहुत मेहनती है सुना। हाँ ये बात में भी उन्होंने तारीफ की काफी आपकी, के इस मामले में आरजे वंशिका जी बहुत मेहनती है, आप उनसे पूछिए।
0: ओके ओके, जरूर जरूर मैं बात करूंगी आपसे।
1: बिल्कुल अमीना खान जी मास्टर
0: जी
1: आइए हर एक फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे
2: जी
1: स्टडी का फील्ड है, चाहे रेडियो का फील्ड है, यूट्यूब का फील्ड है, इंस्टाग्राम का फील्ड है, मास्टरी है इन्हें वैसे तो।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमन जी को भी और
2: वही
0: आपको
2: वही
0: भी। मैं कोशिश करूंगी, जब मुझे हेल्प मेरी तरफ से हो पाएगी जरूर करूंगी।
2: जी, और आपने छुपाई हमसे ये बात, ये तो इस बात की नाराजगी है हमसे। क्यों छुपाया आपने, क्यों छुपाया आपने कि आप मतलब मिठाई के डर से छुपाया शायद आपने?
1: नहीं, मिठाई की ये खुद भी नहीं खाती है और बाकी मिठाई की परवाह भी नहीं करती है अमीना जी, ऐसा कुछ भी
0: उनका
1: नहीं
0: उनका
1: है।
0: कहने का मतलब है कि मतलब
2: नहीं, अवार्ड मिला है इनको, ये बताया ही नहीं इन्होंने।
0: अच्छा वो आपको पता लग गया।
1: एक
2: हाँ
1: नहीं,
2: बताया ना
1: एक
2: आपके लोगों
1: नहीं, दो दो अवार्ड
2: किसके
1: मिले
2: होने।
1: जी। एक तो इसको इनको मिला है
2: माश
1: जी बेस्ट श्रोता का, उभरते हुए श्रोता में, और
0: उभरते
1: एक
0: हुए आज में
1: एक जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार

0: मेन थैंक यू तो आप सभी को, इवन ना तो आप सभी सपोर्ट करते ना मेरे को ये मौका मिल पाता। आपको आरजे अमन जी
1: बिजनेस।
0: को, आरजे अमन जी को,
1: देखिए
0: मेरे
1: जी
0: को
1: आप,
0: बोलने दीजिए सेकंड, आरजे अमन जी को और रेडियो हॉटस्टार के सभी श्रोताओं को और जितने भी लिसनर्स जितने भी मुझे सुनते हैं, प्यार देते हैं, मेरे मम्मी पापा को, सबको मैं
1: जी
0: थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप सभी मेरे साथ नहीं होते ना, मैं इस मुकाम पे पहुंच ही नहीं पाती। अमन जी मुझे मौका नहीं देते, पापा मम्मी
1: चल
0: मुझे पढ़ाते नहीं, आप सभी मुझे सुनते नहीं।
1: चल चलिए, आपका बड़ा है, लेकिन हमारे हम हमें मिठाई तो चाहिए।
0: हाँ मिठाई
1: और
0: जरूर
1: आप ना
0: पहुंचाऊंगी।
1: वो वीडियो आप उसमें व्हाट्सएप चैनल पे ऐड कीजिए, जो आप लोगों का अवार्ड मिला है ना, तो वीडियो शेयर कीजिए आप, तो हमें भी समझ आएगा।
0: ओके ओके जी, उसकी कोशिश करूंगी।
1: इंस्टाग्राम पे तो इसने शेयर शेयर की वीडियो
0: इंस्टा
1: मैंने।
0: नहीं है मेरे पास, इंस्टा नहीं है, वैसे
1: फेसबुक
0: आपको
1: मैं
0: फिर
1: नहीं यूज
0: आपको
1: करती हूँ, मैं
0: आपको
1: व्हाट्सएप।
0: फिर आपको फिर जानकारी कहाँ से मिली इस बारे में?
1: अभी तो किसी लिस्टर ने कहा ना,
0: अच्छा, वीरबल जी ने, अच्छा
1: आप भूल
0: हाँ
1: गई? हाँ
0: हाँ हाँ अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी जी
0: ओके जी, मैं
1: जी
0: कोशिश
1: ठीक है
0: करूंगी उस
1: ठीक है,
0: वीडियो के
1: फिर
0: बारे में। ओके जी, धन्यवाद। और गाना आपका प्ले
1: ओके
0: हो चुका है, और
1: शुक्रिया।
0: गाना बहुत प्यारा लगा मुझे।
1: और कोई गाना सुनना चाहे तो वो भी ठीक
0: बता
1: है,
0: दीजिए,
1: आज
0: वो भी,
1: पर मैं जी,
0: कोई और
1: और
0: गाना,
1: कोई गाना आपकी पसंद का तो सुनना चाहे वो भी सुना देंगे, भी टाइम बचा नहीं,
0: हमारे
1: आपके
0: पास।
1: आपके आरजे परिमल जी, आपके पसंद की सुनना है गाना।
0: अच्छा, मेरी पसंद का तो पुराना गाना था
1: कोई धमाकेदार का, ओ हो जाए
0: पुराना
1: कोई
0: गाना,
1: मजे का
0: गाना
1: वीकेंड।
0: कहती हैं तो ओल्ड इज गोल्ड ही सुना सकता हूँ मैं, तो वो सुना दूंगा, सुना सकता हूँ मैं तो।
1: तो जब तक ये ढूंढते हैं, जी
0: जब तक मैं दूसरों के
1: जी
0: फीडबैक
1: जी
0: पढ़ती, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है?
1: जी जी
0: बहुत
1: हाँ
0: बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: मीना खान जी,
1: शुक्रिया
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपनी पसंद का एक गाना सुनाना चाहता हूँ, दुरुष्का जी अभी आपको
1: जी, बिल्कुल
0: सुनाएंगे।
1: बिल्कुल
0: ओके जी,
1: बिल्कुल
0: आप अपना भी ध्यान रखिए और
1: ओके
0: अपनी
1: जी
0: बेटी रानी का भी, ठीक है?
1: और हमारी
0: जी
1: बेटी को
0: जी
1: मेरी तरफ से प्यार कहिएगा मीना खान जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: ओके जी, ठीक है। तो प्रमाण जी, जब तक गाना ढूंढ रहे हैं, जब तक मैं ले लेती हूँ फीडबैक, निकलस जी का वॉइस भी है मेरे पास।
2: थैंक यू सो वेरी मच मिसेस अमीना खान, मे गॉड ब्लेस योर डॉटर एंड यू। थैंक यू सो वेरी मच, सलाम अलैकुम।
0: जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम जी उनके तरफ से। प्रमाण जी जल्दी से मुझे गाना बताइए, और अगर हो सके तो इसी गाने की सजा लेते हैं। प्रमाण जी
1: नहीं, आप मेरे को आप ही गाना लिखिए मेरी तरफ से, ये वाला मैं भेजता हूँ आपको।
0: जी, और यहाँ पे मेरे पास विष्णु चंद्र जी हैं, लिखते हैं अमीना जी का गाना, ये बहुत जी ने ये गाना सुना दीजिए, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा। अच्छा, विष्णु जी अपना गाना लेके आए हैं मेरे पास, तो विष्णु जी आपका गाना जरूर प्ले करूंगी। वैसे आपने मुझे गाना भेजा है ना, जॉनी वॉकर जी पे फिल्माया गया, सायरा बानो जी पे फिल्माया गया, दूर की आवाज का, वो सुनवाऊंगी मैं गजानन सरोकार जी के लिए। तो अभी मेरे पास प्रमाण जी का गाना आ चुका है, तो इस वाले गाने को भी मैं जल्दी से सुनवा देती हूँ, जो कि अमीना खान जी ने कहा है कि उनके फरमाइश के स्वरूप में मुझे बजवाना है, तो सुनवाती हूँ जल्दी से इस गाने को। प्रमाण जी को जानकारी देना चाहेंगे कौन सा गाना है
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना
0: ये, गाना
1: चाहूंगा,
0: कौन
1: मेरे
0: सा है?
1: गाने तो काफी पुराने ही होते हैं और अच्छे होते हैं, और शायद ये भी आपको पसंद आए। यही है वो शाम और सवेरा, शायद अच्छा लगे आपको तो। और मैं हमारे प्यारे मित्र निकलस जी को एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्यारे शुभ चिंतक भी हैं और बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं,
0: तो
1: तो
0: गाना मैं प्ले कर देती हूँ।
1: गाना।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया फरमा जी आपने अमीना खान जी को डेडिकेट करते हुए इस प्यारे से गाने के लिए। आपकी बेहतरीन फरमाइश के लिए शुक्रिया आपको। और यहाँ पे मेरे पास फीडबैक है, निखिल जी का फीडबैक है वॉइस में, और अमीना खान जी लिखते इस प्रोग्राम प्यारे से, बहुत बहुत शुक्रिया आरजे वंशिका जी, आरजे परमार जी, इस प्यारी सी गुफ्तगू के लिए और इस प्यारे से प्रोग्राम के लिए शुक्रिया आपका भी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अमीना खान जी।
0: और यहाँ पे आज मतलब बहुत सारे सभी लिखते हैं कि बेहतरीन गाना सुनने को मिला है, निकलेस जी का वॉइस यूटेक है वो भी सुन लेते हैं।
2: ओह माय गॉड, मिस्टर फार्मा, योर चॉइस वन ऑफ द बेस्ट चॉइस माय डियर, ब्यूटीफुल चॉइस, थैंक यू सो वेरी मच आरजे वंशिका जी एंड आरजे एमएस फार्मा, beautiful song, beautiful choice.
1: Thank you,
2: I
1: thank
2: don't
1: you.
2: know how to sing, then I will try my best one day.
0: ओके जी, तो आपसे ही बातचीत करने वाले हैं क्योंकि आपने यहाँ पे हमें आंसर दिए हैं 4 बार, पर 4 बार आपका मौका नहीं लग पाया इसलिए आपसे स्पेशल कॉल करी जा रही है और ये आज की आखिरी कॉल रहेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल निकला जी।
2: हेलो
1: हेलो मिस्टर निकलस, हाउ आर यू?
2: Welcome to Denmark. How are you, my
1: dear? I'm fine, and you?
2: Oh, not bad. Not bad. I'm pretty good.
1: Yes,
2: oh,
1: yes.
2: Oh, it's so nice to hear you, my dear. I miss you a lot. Last week I couldn't speak with you, my dear.
1: Yes, yes. I like you very much and like your feedback and like your things about me. And your feedback is always good and very good. वंशिका जी, विल यू ट्रैक मिस्टर निकलस?
0: निकलस जी, हाउ आर यू बाय द वे?
2: नॉट बैड माय डार्लिंग, आई एम वेरी फाइन,
0: थैंक यू सो मच निकलस जी। आई एम फाइन माय ब्रदर, एंड आई विल लाइक टू से दैट यू ऑलवेज गिव फीडबैक्स ओवर मैनी सॉन्ग्स एंड मैनी लिसनर्स फीडबैक्स, यू ऑलवेज इंकरेज ऑल दैम, दैट्स द थिंग, द मेन थिंग ऑल द बेस्टेस्ट लिसनर कैन हैव इन दैम. And I'm also grateful for this. And today you also, when Amina Khan ji said that her daughter is sick, you did good feedback and cared for her daughter. That's so kindful nature. And now for this, and you also participated in our show, in so you also given like 5 to 6 answer, but didn't get any chance. That's why we are special calling you. And for the special call, which song you want to hear?
2: Yeah.
0: And by the way, how was my English?
2: Yeah. Oh my goodness, I told you very beginning, you are speaking perfectly, fluently. It's not Indian style. I like it.
0: But by the way, what this means, ma'am, it's not Indian style, is it a compliment?
2: Yeah, absolutely. I mean, some people, Indian English, you know very well, you're living in this country.
0: Yeah.
2: They speak a little bit different style. You're speaking so. Your grammar is a very perfect grammar. I like it.
0: Thank you
2: I
0: so
2: like
0: much.
2: It very much.
0: So,
2: yeah.
0: Nicholas,
2: but you, I hope you study in really good school.
0: Yeah, I did study in really good school in my high school's timing. And right now.
1: And Nicholas, she's my lovely daughter. And you are
2: yes,
1: you are a great man. You are a great
2: I'm
1: man.
2: Your son also, Mr. Parma, he's your daughter. I'm your son.
1: Yes,
2: Don't
1: yes.
2: Worry.
1: Yes, you are as my son. And I always praise you because you are a great and you are a very, very politely man.
2: No, sir, you are very humble. You're very humble. You're so nice, so polite. I respect you, Mr. R.J.M.S. Burma, because I respect all the Indian people. They're so honest and so nice people. I love them so very much. And remember, my age and Mr. Aman, we are both same age.
1: Yes, yes, yes. And, and
2: you have a bio data of Mr. Aman. Oh my God! You know the Bollywood, you know your own people also. Great, I love you, man.
1: Yes, yes, yes, yeah, yeah, yeah, yeah. And I think you are a great listener, in Radio Hostar. I want to choice that
0: कौन सा गाना सुनना
1: you
0: चाहेंगे?
1: will come India and I will meet you.
2: You know what, Mr. Perman? All Radio Hotstar, this is my family. I love my as like my family. We are joint family. We're all together every day. My day is very important, but still I'm listening my little sister after I want to catch G.
0: तो
2: And you.
0: सो
2: You
0: विच सॉन्ग
2: people are nice.
0: सो विच सॉन्ग यू वांट टू लिसन मतलब
2: I
0: निकला
2: want
0: सिंह
2: to this movie called Pakira?
0: जी
2: I
0: जी
2: don't know. Gungo roti
1: वाह वाह वाह, घुंघरू
0: रहा
1: की तरह बजता रहा हूं मैं. यस यस, इट्स ऑल सॉन्ग. इट्स ऑल सॉन्ग संग भाई किशोर कुमार. संग भाई किशोर कुमार, इट्स ऑल
2: Sir,
1: सॉन्ग.
2: this is my friend. He's feeling bugger. He don't want to talk with you. He's such a stupid
1: या
0: तो चलिए,
2: All right, thank you very much,
1: योर
2: sir.
1: चॉइस इज सो ब्रिलियंट चॉइस यू हैव.
2: My pleasure. My
0: ओके
2: pleasure,
0: जी,
2: sir.
0: तो
2: I
0: चलिए.
2: respect you. You, I love you so much, sir.
0: ओके जी,
2: Wonderful. Thank you so very much.
0: ओके जी, तो
1: देन
0: चलिए गाने को प्ले कर दिया है. एंजॉय कीजिए.
2: देन
1: रश
2: रश
1: देन
2: थैंक यू
1: रश्का
2: लॉट.
1: जी
2: बाय
1: प्ले
2: बाय.
1: योर सॉन्ग. बाय बाय
2: थैंक
1: देन
2: यू सर.
1: रश्का जी,
0: बाय
1: प्ले
0: बाय.
1: योर सॉन्ग. बाय बाय
0: बाय.
1: बाय.
0: ओके जी, निकलेश जी से बातचीत करके काफी अच्छा लगा. और राहुल पासी जी लिखते हैं, आज ब्रह्मा जी का गाना भी बहुत प्यारा लगा, धन्यवाद देना चाहेंगे. तो निकलेश जी
1: बहुत
0: का
1: बहुत
0: गाना,
1: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आर के पासी जी, राहुल पासी जी.
0: तो इसी गीत के साथ इजाजत लेना चाहें. तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेनी चाहिए.
0: एंजॉय कीजिए आप सभी रेडियो गाना और बजाते रहो दिल से. फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोपहर को 3 बजे रेडियो गाना पे फिल्मी बातों के साथ में. तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक
1: और
0: केयर,
1: बहुत
0: बाय
1: बहुत
0: बाय.
1: शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे बहनों और भाइयों के, जो आप मेरे साथ जुड़े मेरे प्रोग्राम फिल्मी बातों में. और स्पेशली थैंकफुल टू मिस्टर निकलस एंड अमीना खान एंड सर्वेश भगत, बीरबल बघेल और आर के रवि एंड सर्वेश भगत ब्रदर. ठीक, थैंक्स वेरी मच.
0: टेक केयर, बाय
1: मैं
0: बाय.
1: आपसे मिलूंगा अगली बार 3 बजे अगले प्रोग्राम में, संडे को फिल्मी बातों के प्रोग्राम में. मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, जरूर सुनिएगा, जुड़िएगा मेरे साथ. वेरी
0: बाय
1: वेरी थैंक्स, बहुत
0: बाय.
1: बहुत धन्यवाद. बाय बाय बाय बाय.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो इन संडे स्पेशल में गीत मस्ती का। ये हर यानी कि चौथे रविवार को होता है गीत मस्ती, तो आज बिल्कुल गीतों के साथ मस्ती करने वाले हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे इन चार राउंड के साथ। यानी 4 राउंड होंगे आज के, मतलब फर्स्ट राउंड में होगा म्यूजिक मस्ती यानी म्यूजिक पहचानना होगा, सेकंड राउंड में होगा फास्ट फॉरवर्ड यानी कि गाने होंगे बहुत ही स्पीड में बजेंगे लेकिन आपको सही गाने पहचानने होंगे, और थर्ड होगा उल्टा पुल्टा, गाने के बोल उल्टे पुल्टे रहेंगे आपको सीधा करके उसका गाना बजाना होगा, और नंबर 4 रिवर्स वाले गाने होंगे उसको सीधा करके भेजना होगा। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, आते इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे और बहुत से दोस्त से जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे इन्हें प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, वेलकम है। और अशोक देशमुख जी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, अशोक देशमुख जी आपका भी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी मुबारक हुसैन जी। और गजानन सुलकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और आज इनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप जिए हजारों साल। और सर्वजीत शेट्टी जी जुड़ चुके हैं फाजिलका पंजाब से, वेलकम करते हैं। मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ ये देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं देवेंद्र सिंह जी। शायद आप इन्हें फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आपका वेलकम है। और गीता शरण जी जुड़ चुकी हैं, ये सीतामढ़ी बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं। अगर मैं यानी यहाँ पे लाइव चैट की बात करूँ तो यहाँ पे अनिल कश्यप जी और यानी कायनाथ जी और प्रीति रायदास जी और भी बहुत से दोस्त यहाँ पे चैटिंग में धमाल मचाए हुए हैं, सभी का वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर चलते हैं। व्हाट्सएप चूंकि आज सारा काम व्हाट्सएप से करना है, तो व्हाट्सएप में जुड़ने वाले हैं रूबीना नाथ जी हैं, ज्योति खटवटे जी हैं, रंजीत जी हैं और काजल झक्का जी हैं, अमृत जलील जी हैं और पूजा भास्कर जी हैं, और जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं सभी का वेलकम करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज पहले इसे सुनिए ना कि कैसे क्या करना है।
1: गीत मस्ती विद आरजे अमन के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। आज का शो होने वाला है गानों, गेम्स और मस्ती से भरपूर। यहाँ सिर्फ गाने सुनने नहीं है, बल्कि हर राउंड में अपनी म्यूजिकल नॉलेज का टेस्ट भी लेना है। गीत मस्ती में होंगी चार मजेदार राउंड। राउंड वन, म्यूजिक गेस राउंड। सिर्फ म्यूजिक बजेगा और आपको पहचानना होगा कि ये किस गाने की धुन है। देखते हैं कौन सबसे जल्दी सही जवाब देता है। राउंड टू, फास्ट फॉरवर्ड राउंड। गाना चलेगा फास्ट फॉरवर्ड में, गाने की स्पीड तेज होगी, लेकिन आपको पहचानना होगा कि आखिर ये कौन सा गाना है। राउंड थ्री, उल्टा पुल्टा सिंग एंड गेस। अब गाने के बोल होंगे पूरे उल्टे पुल्टे, आपको पहचानना होगा कि असली गाना कौन सा है। राउंड फोर, रिवर्स सॉन्ग गेस। और अब आएगा सबसे मजेदार ट्विस्ट। गाने के बोल होंगे रिवर्स यानी उल्टे क्रम में, आपको उन उल्टे बोलों को सुनकर पहचानना होगा कि ये किस गाने की बोल है। गीत मस्ती आरजे अमन के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। गानों की मस्ती, गेम्स का ट्विस्ट और मनोरंजन फुल ऑन। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
0: तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि आज आपको क्या करना है, तो बताऊंगा इस गाने के बाद। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ चुके हैं निशांत राय बोले जी, विष्णु चंद्र जी, अनिल कश्यप जी और प्रीति रायदास जी, वेलकम करते हैं आपका भी।

जुड़ चुके हैं यानी आरिफ सिंधी जी और पीकू राय जी, वेलकम करते हैं आप दोनों का। लेकिन सभी से कहेंगे कि अब व्हाट्सएप पर ध्यान देना है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होने वाला है व्हाट्सएप से ही आज होने वाला है।

0: दोस्तों, अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का पहला राउंड, म्यूजिक गेस राउंड। इस राउंड में आपको सुनाया जाएगा सिर्फ गाने का म्यूजिक। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये किस गाने का म्यूजिक है। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद के गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए और पहचानिए अपना गाना। म्यूजिक गेस राउंड शुरू करते हैं,
1: लेकिन इस गाने के साथ। और इसी गाने के

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: और मेरे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो यानी प्रीति रायदास जी का आज पहुंचा हुआ है, यानी कि प्रोग्राम का आगाज आज इन्हीं से होने वाला है। और सर्वजीत सेठी जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, मिसाल अंगद जी हैं, रंजीत जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, जलील जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, अनिल कश्यप जी हैं, एंड यानी यहाँ पे एक निशांत राय भोले जी हैं, और विभूति भूषण जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, गजानन सलोकार जी हैं, और अशोक पाल जी हैं, इनका तो नाम मुझे सेव नहीं है भाई, नाम बता दीजिए, अंत में नंबर है यानी 37881, नाम क्या है, और रवि लोधी जी हैं, और अनिल यानी पंचाल जी हैं, ओके जी, और इस्माइल खान जी नहीं इनका गलत है सॉरी, और ये राजू सिंह जी हैं, और एक साहब और भी जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, अंत में नंबर है 52890, प्लीज अपना नाम बता दीजिए, और एक साहब और भी हैं उनका भी नाम बता दीजिए प्लीज, अंत में नंबर है यानी 90714, और यानी के कायनाथ जी हैं और मनीषा शर्मा जी हैं, तो सीधे कॉल लगाते हैं इन प्रीति रायदास जी को सबसे पहला। जी प्रीति रायदास जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है गीत मस्ती में, कैसी हैं आप? हेलो हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, और कैसी हैं आप प्रीति जी? सबसे पहला छक्का लगा दिया आपने,
1: बहुत अच्छी, आप अपना बताएं।
0: मैं तो एकदम छक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में, और बहुत स्मार्ट
1: ये तो पता ही है।
0: हाँ जी, तो बताइए आज तो एक बार में सबसे पहले आपने मैसेज कैसे भेज दिया, कैसे गाने को पहचान लिया कि कौन सा गाना है, जरा गाने के बोल बताएंगे आप?
1: बस म्यूजिक पता था,
0: म्यूजिक पता था इसलिए आपने सबसे पहले भेज दिया है ना, तो कौन सा गाने का बोल है बताएंगे आप?
1: मेरे ख्वाबों में जो आए।
0: अच्छा, बिल्कुल सही, तो आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: बस यही सॉन्ग चलाइए,
0: मेरे ख्वाबों में जो आए। अच्छा
1: हाँ।
0: मेरे ख्वाबों में जो आए
1: आके मुझे छेड़ जाए,
0: क्या बात है, एंजॉय कीजिए, प्ले कर दिया इस गाने को,
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना।

माय गॉड, दोस्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब सभी का जवाब बहुत ही आ रहे हैं। और एक जस्ट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के लिए हमारा सपोर्ट किया, हेल्प किया है आरजे वंशिका जी ने। प्रोग्राम को शानदार और खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू आरजे वंशिका जी।

0: आ गया। वैसे मेरे पास बहुत सारे जवाब आए हुए। सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे ये सोनू गौतम जी हैं, मिशाल अंकल जी हैं, रंजीत जी हैं, रुबीना नाथ जी, अनिल कश्यप जी हैं, देवेंद्र जी हैं, एमडी जलील जी हैं, ज्योति खटवाड़े जी हैं, इस्माइल खान जी हैं, राजेश कुमार जी हैं और गजानन सलोकार जी हैं, विष्णु जी हैं, अरुण मंडल जी हैं, पीकू जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं, अशोक पाल जी हैं, रवि लोधी जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, काजल झक्का जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, निशांत रायबोरा जी हैं, अतुल जवाहर जी हैं, नीतू शरण जी हैं, प्रीति रायदास जी हैं और बहुत से दोस्त हैं, लेकिन सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सीधे कॉल लगाते हैं सोनू गौतम जी को। सोनू गौतम जी बहुत बहुत वेलकम है गीत मस्ती में। कैसे हैं और क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: जी मैं काम कर रहा था, अभी ट्यून किया फिर आपका चैनल, फिर मैंने देखा कि अरे सवाल जवाब वाले प्रोग्राम चल रहे हैं तो ऐसे में तो हम आज बहुत जल्दी लेते हैं
0: और लेते ही आपने सीधे छक्का बाउंड्री के बाहर कर दिया बोला।
1: जी सर
0: क्या बात है भाई, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, फौरन जवाब आपका आता है, आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी आपको भेज देते हैं। जी ये तो बात है, मानना पड़ेगा।
1: हाँ पार्टिसिपेट वाले प्रोग्राम में मैं जुड़ता हूँ, आज बंसेगा जी वाले में भी जुड़ा था, वहाँ भी 7-8 गाने सुने थे अपने।
0: क्या बात है भाई। फिलहाल बताइए आज इस गाने का पहले बोल बताइए जो जवाब आपने देना है।
1: इस गाने के बोल है मतलब दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।
0: बिल्कुल, और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: कोई बात नहीं, मैं कम से कम कहने वाला हूँ कि विनर बनी हुए इस गाने के लिए आरजे आकांक्षा जी, बहुत बहुत वेलकम भी आपका। और ये प्रीति रायदास जी और नीतू जी है, मतलब नीतू शरण जी, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही चुकी है। और भी दोस्त हैं जैसे कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी, सोनू गौतम जी, ज्योति खरवाड़ी जी, मिशाल अंगद जी, रुबीना नाथ जी, गजानंद जी है, और मनीषा शर्मा जी, अनिल कश्यप जी, संतोष कुमार जी, देवेंद्र जी हैं, राजेश कुमार जी, सरवजीत सेठ जी, रवि लोधी जी, अमृत जलील जी हैं, रंजीत कुमार जी, विष्णु जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हो, माय गॉड जिनका किनका नाम लूं मैं, लेकिन फिलहाल कॉल तो लगाना पड़ेगा ना, आर जी आकांक्षा जी को कॉल लगाया जाए। वेलकम है आपके, आपका आरजे आकांक्षा जी, बहुत बहुत वेलकम है, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी होने वाली है।
1: पहले मुझे एक शब्द बोलने तो दीजिए।
0: अच्छा,
1: इतना एक्साइटमेंट, थैंक यू सो मच।
0: बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए।
1: हाँ नहीं, आप बोल लीजिए, हम आपको सुन लेते हैं,
0: क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके सुन भी रही हैं और आज पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मीन्स अ लॉट फॉर मी, थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपका अपने शो में गीत मस्ती में। और पहले तो जवाब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ आपसे बातें भी करनी है बहुत सारी, मैं क्या क्या बातें करूं, मैं तो खुद ही भूल गया।
1: अच्छा ही होगा आप भूल ही जाए, क्योंकि आप शो कर रहे हैं वहाँ आपको फोकस होना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल।
1: तो काम पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले जवाब बता दीजिए मुझे।
1: धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, यही सॉन्ग है। एक्चुअली आपको बताऊं, हाँ। मैंने यही सोचा था अगर मैं विनर बनी तो यही सॉन्ग मैं प्ले कराऊंगी।
0: अच्छा,
1: मैं पता ही नहीं था कि यही सॉन्ग मतलब एज अ क्लू होगा।
0: अच्छा, ओहो यही बात
1: है। शायद इसीलिए मतलब बता भी ले गए, वरना तो इतने सारे लोग हैं सब पहले ही बता देते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: हम सुनते
0: हैं। बहुत जवाब आ रहा है ना, माय गॉड मैं सबका नाम ले नहीं सकता।
1: हाँ।
0: इतने जवाब हैं के।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: क्यों सबका नाम लेने में क्या हो जाएगा,
0: मतलब वो क्या कहते हैं, यानी कि समय भी लगेगा और मतलब बहुत से दोस्त है ना, बस समझे कि मैंने उनका नाम अगर छूट रहा है तो समझे कि उनका नाम भी शामिल है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है।
1: नहीं मैं क्यों समझूं, आपको समझाना पड़ेगा, हम समझदार नहीं हैं।
0: लेकिन आपका ही आना अच्छा लगता है।
1: अब आप तो छोड़ दीजिए।
0: अच्छा, ओके, तो गाना कौन सा प्ले कर दूं, यही धीरे धीरे आप मेरे ओके एंजॉय कीजिए इस गाने को, मैं जरूर प्ले करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप, आज मेरे पहले बार आप शो में आई है तो कुछ तो कहना बनता है ना।
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे इधर बहुत अच्छा मौसम है, बारिश वाला। आपके उधर का कैसा है?
0: मैं तब तो बारिश तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हाँ। है, लेकिन मुझे गर्मी से मतलब हाँ। नहीं है, क्योंकि मैं तो अब समय रहने कहा हूँ, बिल्कुल
1: ठंड लग रही है। पर ठीक है, वो बेस्ट है, गुड है। पर आपके, आपको जितने लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कि उनके उधर का भी मौसम, मतलब कुछ लोगों के उधर और गर्मियां हो, तो बस मैं यही कहूंगी, चूंकि मैं छत पे हूँ तो चूंकि यूनिवर्स बहुत सुनती है, तो बस यही कहूंगी थोड़ा थोड़ा बारिश यहाँ से सभी तक पहुँचा दे, ताकि वो भी इस मौसम का लुत्फ उठा सके।
0: और एक्चुअली आज आपका शो नहीं था और इसी बारे में मुझे आपको सुनने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो चाहूंगा कि कुछ और भी बोले कि मेरे दोस्त सुने आपको।
1: तो क्या बोलूं, बस एक शायरी बोल लूं?
0: हाँ हाँ वाह, नेकी और पूछ।
1: अरे वैसे ये काफी फेमस है और इवनिंग का वक्त है, मुझे लगता है ये सूटेड है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तुम्हारे शहर का मौसम बहुत ही सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बहुत ही सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं घर बुरा ना लगे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब लेकिन एक शायरी से क्या होगा, कम से कम दो होना चाहिए ना, क्योंकि एक अधूरा लगता है।
1: ओह माय गॉड, बस करेंगे महोदय, क्या हम प्रस्थान करें अपने गंतव्य की ओर, हम आए थे आपसे सॉन्ग सुनने, आप हमारी ही क्लास लगा रहे हैं, क्या ये आपके बच्चों की क्लास चल रही है?
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
1: If not, can I go from my side?
0: Okay, okay, okay. You may go. चलिए एंजॉय कीजिए गाने को।
1: थैंक यू। ओके थैंक यू।

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहे।

धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। सबसे पहले मैसेज पहुंचा है मेरे पास रुबीना नाथ जी का, सोनू गौतम जी का, प्रिंस पासवान जी का, रुपचंद जी का, अनिल कश्यप जी का, मिशा लंगा जी का, रंजीत जी का, ज्योति जी का, सर्वजीत सेठी जी का, पीकू जी का, एन गजानंद जी का, अभिषेक तिवारी जी का, अशोक पाल जी का, मनीषा शर्मा जी का, जलील जी का, विष्णु जी का, दीपक जी का, प्रीति जी का, दिगंबर जी का, राजेश कुमार जी का, निशांत राय बोले जी का, और मतलब बहुत से दोस्त का। ओके, फिलहाल तो सीधे कॉल ही लगा लेते हैं हम रुबीना।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं रुबीना नाथ जी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम तो एकदम चकाचक, मतलब वो तो बहुत स्मार्ट है।
1: हाँ, इसे प्रोग्राम भी चकाचक चल ही रहा है।
0: धन्यवाद देते हैं आपको। तो बताइए जवाब क्या है पहले।
1: बहुत अच्छा लग रहा है। जवाब है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती,
0: दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, है ना? ऐसा ही है ना? ओह माय गॉड, ऑफ हो गया। इन मतलब ऑफ होने का मतलब के व्हाट्सएप ही पता नहीं ऑटोमेटिक बंद हो गया, मतलब हैंग हो गया होगा मेरे ख्याल से। मुझे दोबारा कॉल लगाना पड़ेगा इनको। मेरी गलती है। हाँ जी, आई एम सॉरी, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था।
1: हाँ, शायद नेटवर्क इश्यू हो गया इसलिए।
0: नहीं, मेरा ये व्हाट्सएप हैंग हो गया था इसके लिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: जी इसलिए।
1: तो जवाब मैं बता दे रही हूँ, जवाब होगा जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप?
1: गाना सुना दीजिए आप हमको।
0: सोचिए जल्दी,
1: यही वाला सुना दीजिए।
0: अच्छा, यही सुना दो।
1: वैसे मैं सोच ही नहीं थी, तो काम कर रही हूँ ना इसलिए।
0: कोई बात नहीं, चलिए सुनवाते हैं इस गाने को, एंजॉय कीजिए।
1: ओके, थैंक यू,
0: वेलकम।

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो।

और सोनू गौतम जी भाई क्या करें, आप ही का नंबर वन में आ गया है, क्योंकि आपका एक बार तो हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कोई बेईमानी नहीं चलती है। एक नंबर में आपका है सोनू गौतम जी, रूपचंद जी, जनील जी, ज्योति जी और मिशाल अंगद जी, दीपक जी, अब्दुल जब्बार जी, अशोक पाल जी, दिगंबर जी, सर्वजीत शेट्टी जी, राजेश कुमार जी एंड संतोष कुमार जी, निशांत रायबोले जी, सर्वेश भगत जी, सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं हम आपको सोनू गौतम जी।

0: भाई सोनू गौतम जी एक बार फिर से स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सर।
0: भाई आप सबसे पहले जवाब देते हैं और हमारे दोस्त जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पीछे हो जाते हैं यार, क्या करें लेकिन मैं मना नहीं कर सकता, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है।
1: ठीक है सर। हाँ रहा हूं मैं।
0: जी जी, और जवाब बता दीजिए।
1: किस्सा हम लिखेंगे दिल्ली लेकर हार का।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना लिख के भेजा था मैंने, कोई जाने कोई ना जाने।
0: ओके,
1: और प्यार हो गया मूवी।

0: दोस्तों और स्टार्ट होने वाला है सेकंड राउंड, तो इसका प्रेस सुन लीजिए।
1: दोस्तों अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का दूसरा राउंड, फास्ट फॉरवर्ड राउंड। इस राउंड में आपको सुनाया जाएगा गाना फास्ट फॉरवर्ड में। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये कौन सा गाना है। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद के गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, गाना फास्ट फॉरवर्ड में सुनिए और पहचानिए। फास्ट फॉरवर्ड राउंड शुरू करते हैं।

0: गुजरती नहीं रात।
1: दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज जो पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है हमारे यानी कि प्रिंस पासवान जी का। सोनू गौतम जी भी हैं और नीतू सरन जी हैं, ओके, और सुनील कुमार जी हैं और रूपचंद जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, जलील जी हैं और टीपुराय जी हैं और यहाँ पे विशाल अंगद जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं और यहाँ पे दिगंबर जी हैं और अशोक पाल जी हैं, गजानंद जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं भाई, और किनका किनका नाम लूँ मैं, ये काजल झका जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, सर्वेश

0: भाई प्रिंस पासवान जी बहुत बहुत वेलकम है आपका।
1: थैंक यू सर। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
1: अच्छे सर, आप बताइए।
0: अरे हम तो बहुत ही एकदम स्मार्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: ओके तो बताइए जवाब क्या है?
1: तो पायलिया हो हो।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: बाजीगर फिल्म का सॉन्ग तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है।
0: तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है, क्या गाना है।
1: जी सर।
0: तेरे चेहरे। ओके एंजॉय कीजिए, सुना दिया।

और सेकंड राउंड का सवाल नंबर सेकंड के लिए तैयार रहेंगे आप सभी। और अगर मुझे समय मिलेगा तो स्पेशल कॉल करने के लिए भी मैं कोशिश करूंगा।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो

तो मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो यानी नीतू शरण जी का और विभूति भूषण जी का, काजल जगकार जी का, सोनू गौतम जी का और प्रिंस पासवान जी का, ज्योति खटवड़े जी का, नंदलाल यादव जी का, रूपचंद गोयल जी का, एमडी जलील जी का, पीकू राय जी का, अब्दुल जब्बार जी का, सुनील कुमार जी का, दीपक गायकवाड़ जी का, संतोष कुमार जी का, पूजा भास्कर जी का, राजेश कुमार जी का, दिगंबर सिंह जी का और नजीर अंसारी जी का, जितेंद्र जी का और गजानंद जी का, निशांत राय बोले जी का और जुड़ चुके हैं ये सत्येंद्र वर्मा जी। बहुत बहुत वेलकम। सॉरी, ये सत्येंद्र, ये वीर सिंह जी। ओके।

0: ओके तो नीतू जी को कॉल लगाया जाए।
1: कुछ ऐसा असर न पता अपना मुझे ना है जमाने की खबर।
0: नीतू जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो
2: हाँ
0: जी बहुत बहुत
2: आवाज आ रही है।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका।
2: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत सफल हो गई।
2: रोज देखते हैं आपका, रोज सुनते हैं आप लोग आपका प्रोग्राम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुनती हैं और आप सबको अच्छा भी लगता है।
2: हाँ।
0: जी तो नीतू जी आप कब से सुनती हैं रेडियो हॉटस्टार?
2: अभी एक सप्ताह हो रहा है।
0: एक सप्ताह सुन रही है? अच्छा जी, ओके। और किसने बताया इसके बारे में?
2: मेरे हस्बैंड ने बताया।
0: अच्छा अच्छा, उन्होंने बताया, चलिए अच्छी बात है। फिलहाल ये बताइए जवाब कौन सा है?
2: जवाब है कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां
0: चुराऊं। हाँ, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और गाना कौन सा सुनना चाहती है ये भी बता दीजिए।
2: गाना यही गाना सुना दीजिए।
0: यही सुनिएगा। अखियां, अब तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अखियां मिलाऊं उसको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
2: अच्छा ठीक है,
0: अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। ओके, गाना मुझे मिल गया है।
2: अच्छा,
0: अब डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो गया डाउनलोड, अब मैं प्ले कर दूँ। ओके
2: ठीक है,
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते

0: बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और ओह माय गॉड। खटवड़ी जी इस बार सेकंड हो चुकी हैं और थर्ड हुए हमारे सोनू गौतम जी और इन प्रिंस पासवान जी, रूपचंद गोयल जी, पिकू राय जी, अनिल कश्यप जी, एमडी जलील जी, रुबीना नाथ जी और इन विष्णु चंद्र जी, दिगंबर जी और संजय सानी जी, संतोष कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी हैं और दीपक कुमार गायकवाड़ जी, दीपक सिंह जी हैं, सॉरी ये दिवंदर सिंह जी हैं और सर्वेश भगत जी और नजीर अंसारी जी हैं, बाबूलाल जी कह रहे हैं, इनका नाम भी विभूति भूषण शरण जी, नंदलाल यादव जी हैं और क्या नाम है, स्वतंत्र वीर सिंह जी, मतलब बहुत से फिलहाल कॉल लगाते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपका आरजे आकांक्षा जी।
1: थैंक यू।
0: वेलकम जी। तो पहले जवाब पूछूंगा आपसे, ज्यादा बातें नहीं करूंगा।
1: नई बार कर सकते हैं।
0: हाँ बोलिए।

0: बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, 7 करोड़।
1: लग रहा है कि हम काही कहे छोड़ दीजिए।
0: ओके
1: आज पता है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हो रही है बारिश और गाने वही सारे प्ले हो रहे हैं जो मुझे पसंद है। अच्छा लग रहा है।
0: ये बात है। फिलहाल आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फुल्ली फुर्सत में हूँ मैं, मेरी इधर चांद दिख नहीं रहा है तो बस उसी पे एक गाना सुनना चाहती
0: हूँ। बता दीजिए।
1: उससे पहले कुछ शायरी पेश करूँ?
0: हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ।
1: ठीक है तो सुन, ठीक है?
0: हाँ हाँ सुनाइए।
1: नहीं इससे पहले मैं आपको गाने बता दूँ ताकि आपको अगर डाउनलोड करना हो तो।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए।
1: ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है, यही।
0: ओके मैं फिलहाल गाने टुक को ढूंढ, हाँ मुझे गाना मिल चुका है ऑलरेडी, मेरे पास है, अवेलेबल है।
1: ओके
0: नो प्रॉब्लम, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
1: दो शायरी आपको जल्दी से सुना देते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना किसी किसी को आता है। ये स्पेशली नागेश्वर जी के लिए है, नागेश्वर जी के लिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना किसी किसी को आता है, रुला के जो मना ले वो सच्चा यार है, रुला के जो मना ले वो सच्चा यार है। और आगे की लाइन खास तौर पे सुनिएगा, और जो रुला के खुद भी आंसुओं को बहा दे वो आपका सच्चा प्यार है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात, सच में बहुत ही कमाल का लाइन है।
1: इसीलिए तो स्पेशली बोला है। देखिए प्यार और दोस्त दोनों में एक डिफरेंस होता है, बहुत ही महीन सी बाउंड्री होती है पर होती है, और बहुत ही खूबसूरत है दोनों रिश्ते। पर दोस्ती भी बहुत अजीज होती है और प्यार भी, मतलब बहुत खास रिश्ते हैं दोनों।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हमने कहा दोनों को मिक्स करके समराइज कर देते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: हाँ, और एक और सी शायरी है, सुन लीजिए। हमें आदत नहीं हर किसी पर फिदा होने की।
0: वाह वाह, क्या बात है। हमें आदत नहीं है, हमें आदत नहीं है हर किसी पर फिदा होने की। जी जी, थैंक यू सो मच।
1: आपके लिए गौर फरमाइए। हमें आदत नहीं है हर किसी पर फिदा होने की, इनसे बात ही कुछ ऐसी थी कि संभाल ना पाए।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब, जबरदस्त। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए। यार कुछ कहना है?
1: शुक्रिया, थैंक यू,
0: वेलकम।
1: ना इतना कह के कम था। अब निकल लेते हैं पतली गली पकड़ के। थैंक यू।
0: ओके जी, धन्यवाद,
1: बाय।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो

0: और इस बार सबसे पहले ज्योति खटवट जी, अंचल कुमार जी, सोनू गौतम जी, रूपचंद जी हैं और दीपक कुमार गायकवाड़ जी, रुबीना नाथ जी, रंजीत जी, दिगम्बर सिंह जी और प्रकाश कुमार जी, निशांत राय बोले जी और सर्वजीत सेठी जी और संतोष कुमार जी और ये विभूति भूषण जी और विष्णु चंद्र जी, संगीता मुलकर जी, गजानंद सुनकार जी, संजय सानी जी और शिल्पा यानी मतलब शिल्पा बेन जी, अजय कुश जी, अस्मिता गोप जी और काजल झक्का जी, मतलब मोर भाई गौर, सर्वेश भगत जी भी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल कॉल लगाते हैं ज्योति खटवट जी को।
1: जिस दिन से तुझको देखा।
0: ज्योति जी बहुत बहुत आपका वेलकम है गीत मस्ती में, कैसी हैं आप?
2: आप कैसे हो?
0: मैं एकदम स्मार्ट हूँ और आजकल आप जुड़ रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
2: हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है।
0: ओके, तो आज
2: और आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है अवंशिका जी ने, और सुबह का भी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया खेलने।
0: जी जी, वो स्पेशली बनाया गया है इन संडे को फंडे बनाने के लिए, क्योंकि वो यानी कि चैट मस्ती में मस्ती करते हुए गाने को सुनना, एंजॉय करना।
2: जी, प्रोग्राम
0: हम लोग सोचते रहते ना कुछ करने के लिए, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ करते रहे, है कि नहीं? बिल्कुल,
2: बहुत बड़ा योगदान है उनका।
0: जी, उनका इस प्रोग्राम के लिए भी योगदान है। हाँ, ये जितने ऑडियो बने हुए हैं वो सब उन्होंने बनाया। हाँ, हुआ है जी।
2: हाँ, वही तो।
0: तो हाँ, अब बता दीजिए जवाब पहले मुझे।
2: हाँ?
0: जवाब बता, जवाब जवाब
2: चढ़त नदिया।
0: हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: वही, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ।
0: ओके, सुनवा दीजिए।

0: और ये सेकंड राउंड का आखिरी सवाल ये रहा।
1: ये रहे फास्ट फॉरवर्ड गाने की बोल।
2: सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाई, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाई, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे।

बिल्कुल, मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे संतोष कुमार जी का। ओके, और उनके पास संगीता अम्बुलकर जी हैं, और पीकू राय जी हैं, ज्योति जी हैं, और देवेंद्र सिंह जी हैं, और शिल्पा बेन जी हैं, और निशांत रायबोले जी हैं, एक साहब और भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है, सुरेंद्र बाबू, तो बहुत बहुत वेलकम है सुरेंद्र बाबू आपका। दीपक जी हैं, सर्वेश भागा जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, मतलब सीधे कॉल लगाते हैं हम इनको।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, संतोष कुमार जी कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा सर।
0: उस समय सब ट्राई कर रहे हैं लेकिन नंबर लग गया आपका फाइनली, है ना?
1: जी सर, बहुत ट्राई किया।
0: हाँ, बहुत
1: ट्राई किया। जी सर।
0: लेकिन क्या करें, आपसे भी पहले लोग भेज दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? जिनका पहले आएगा मैं तो उन्हीं का नाम लेने वाला हूँ ना, चाहे वो कोई भी हो।
1: जी सर,
0: तो पहले जवाब बता दीजिए मुझे।
1: गूंजी सी है साड़ी फिजा, क्यों हो गया ना।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: राजा हिंदुस्तानी का।
0: तो कौन सा?
1: ये सर
0: बता दीजिए।
1: टाइटल सॉन्ग जो है राजा हिंदुस्तानी का, सर याद नहीं आ रहा गाना।
0: राजा हिंदुस्तानी का कौन सा गाना, मतलब आप कोई भी गाना बता सकते हैं या कोई भी गाना बता सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि राजा हिंदुस्तानी का, कोई भी गाना बता सकते हैं आप, कुछ भी, जो भी गाना दिमाग में आए बता सकते हैं।
1: रिमझिम भरे सावन, मंजिल पिक्चर का गाना सर।
0: अच्छा, ओके, रिमझिम भरे सावन, ठीक है, मैं सुनवाता हूँ आपको।
1: थैंक यू सर।
0: रिमझिम गिरे सावन है ना?
1: हाँ, गिरे सावन।
0: ओके,
1: रिमझिम गिरे सावन।
0: हाँ, क्योंकि आपने कहा रिमझिम भरे सावन तो वो नहीं मिल रहा था, रिमझिम गिरे सावन मिला। एंजॉय कीजिए, सुनवा दिए।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम जी।

0: स्टार्ट।
1: दोस्तों अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का तीसरा राउंड, उल्टा पुल्टा सॉन्ग गेस। इस राउंड में आपको सुनने को मिलेंगे गाने के उल्टे पुल्टे बोल। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये किस गाने के बोल हैं। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद के गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, उल्टे पुल्टे बोल सुनिए और गाना पहचानिए। उल्टा पुल्टा सॉन्ग गेस राउंड शुरू करते हैं।

0: तो ये रहा आज का पहला सवाल।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: प्यार मोहब्बत से कोई इस दीवाने लड़के को समझाए, दूर उतनी ये जाए, हाँ जाए जाए, न जाने क्यों ये घबराए, दर्द दिल न जाने जितना पास में आओ।
1: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दी।

बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचा हुआ है। सबसे पहले रंजीत जी का पहुंचा हुआ है, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का पहुंचा हुआ है, और हमारे ये सोनू गौतम जी हैं, और यहाँ पे दिगंबर जी हैं, रूपचंद जी हैं, अजय भगत जी हैं, नंदलाल जी हैं, गजानंद जी हैं, प्रकाश जी, संगीता अम्बुलकर जी, विष्णु जी, काजल सरकार जी, और सर्वेश भगत जी, और शिल्पा बहन जी। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम रंजीत जी को।

0: रंजीत जी आपका बहुत बहुत वेलकम है गीत मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: और बहुत दिन बाद आपने पार्टिसिपेट किया है ना?
1: जी कुछ कामों में ऐसे फंस गए थे कि कुछ टाइम नहीं मिल पाया।
0: अच्छा अब निकल गए है ना जब फंसे थे?
1: जी सर।
0: चलिए अच्छी बात है। तो पहले जवाब बता दीजिए कौन सा गाने का बोल था?
1: सर फरोश पिक्चर का है।
0: हाँ हाँ।
1: इस दीवाने लड़कों को कैसे समझाए। अच्छा। प्यार मोहब्बत जाने।
0: और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है दरार और गाने का बोल है दिल हो गया है घायल।
0: दिल हो गया है घायल।
1: गया है जी।
0: ये बीच का है या कुछ
1: बीच का है?
0: तो कुछ मुझे सही से बताएगा, मैं उसी बाद ही मैं ढूंढ पाऊंगा।
1: ऐसे मिली निगाह है पर्दे की ओर से।
0: तो ऐसे कहिए ना, तब ना मैं ढूंढ पाऊंगा। ऐसे नहीं तो मैं ढूंढते रह जाऊंगा, है कि नहीं? ऐसे मिल अरे कोई बात नहीं, मुझे गाना मिल चुका है। मैं सुनवा रहा हूँ आपको। मुझे लगा कि मैं ढूंढते रह जाऊंगा, है कि नहीं? कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए गाने।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम।

0: ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल, सहेली बन्नो की डोरी रेशम, देखी चुप चुप के शर्माए चोरी चोरी, या ना माने ये मैं तो इस पे मर गया, अल्लाह रे हाय हाय ये लड़की है अल्लाह। दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। माय गॉड, सबसे पहले आरके रवि जी का। ओके जी, आरके रवि जी। और हमें सोनू गौतम जी भी हैं, रूपचंद जी हैं, अजय भगत जी हैं, और पीकू राय जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, संजय सानी जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, और प्रीति रायदास जी, अजय कुछ जी हैं, दिगंबर जी हैं, काजल झका जी हैं, और प्रकाश कुमार जी हैं, विष्णु जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, शिल्पा बहन जी हैं, नंदलाल जी हैं, और संतोष कुमार जी, और एक साहब और भी है, पता नहीं क्या नाम है भाई इनका, नाम तो नंबर हरीश कुमार जी। अच्छा हरीश कुमार जी, आपका भी वेलकम करते हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम आर के रवि जी को।

0: आर के रवि जी आपका बहुत बहुत वेलकम है गीत मस्ती में।
1: गुड इवनिंग।
0: हेलो
1: हेलो,
0: आवाज आ रही है मेरी? जी
1: हाँ जी,
0: आर के रवि जी। हेलो
1: जी।
0: ओके जी, तो मैं सबसे पहले, हाँ जी, शायद आपको या तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या आपको आपकी आवाज मुझे आ रही है लेकिन थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। जब मैं बोला हूँ तो आप ही बोलना शुरू कर दे रहे हैं, तो पहले हम लोग राय कर लेंगे पहले कौन बोलेगा।
1: पहले आप बोलिए।
0: हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आर के रवि जी आपका गीत मस्ती में बहुत बहुत स्वागत है और आते के साथ ही आपने छक्का लगा दिया, बाउंड्री पार कर दिया है, तो इसके लिए बधाई हो।
1: नहीं सर, मैं तो सर पहले कर जाता, वो मैं गलती से बार बार अवंतिका जी वाले नंबर पे कर रहा था मैसेज।
0: अच्छा जी।
1: बाद में मुझे अजय भगत जी ने बताया तो फिर वो वाला आपके वाले नंबर पे मैं कर रहा हूँ तब से।
0: अच्छा, वही तो कह रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। और एक चीज, हाँ, आपका कल जन्मदिन है तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, क्योंकि अभी तो 12 महीने में टाइम है ना।
1: थैंक यू सर।
0: तो आपको मैं अभी से आपको बधाई दे देता हूँ, क्योंकि भाई, और आपका कल जो गाना प्ले होगा स्पेशल सॉन्ग रिक्वेस्ट, भाई इतने सैड सैड गाने की रिक्वेस्ट कौन करता है अभी बर्थडे के दिन। मुझे आपके 61 गाने मैंने देखे हैं, करीब करीब सभी उसमें तो मैक्सिमम मुझे सैड ही लगे हैं, लगता है कि दिल टूटे हुए आशिक हैं आप।
1: जी सर, वो तो है, इसलिए इतने सैड साड़ियां मारता हूँ मैं।
0: अच्छा, तो इसीलिए वो लगता है कि किरण जी का हाथ है इसमें।
1: हाँ जी।
0: समझ गया, बिल्कुल। तो सबसे पहले बताइए जवाब क्या है?
1: जवाब है सर, बन्नो की सहेली
0: रेशम की डोरी, ये लड़की है हल्ला, है ना
1: जी।
0: और आप सुनना क्या चाहते हैं?
1: सुनना चाहेंगे सर, मूवी का नाम है और प्यार हो गया, उसका एक सॉन्ग है तेरी याद हम सफर सुबह शाम।
0: हाय क्या बात है, ये तो मेरे पसंद के गाने हैं, सच में सुनवाते हैं। ओके
1: ठीक है सर, थैंक यू सर,
0: वेलकम। और ये गाना मेरा सच में मेरा इन प्लेलिस्ट का गाना है, थैंक यू सो मच, मुझे ये गाना बेहद पसंद है और ये गाना प्ले है और मैं ना गाऊं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।

0: और इसी बीच ये रहा सवाल,
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: समझाना कितना मुश्किल है, तौबा इसको कैसा है ये लड़का, अल्लाह दीवाना। धीरे होते धीरे होते प्यार होता है, होते दिल बेकरार होता है।
3: दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: और ये लाइन बहुत प्यारा है।

वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। मेरे पास सबसे पहले दीपक कुमार गायकवाड़ जी का है, देवेंद्र सिंह जी का आया हुआ है, और यहाँ पे एक साहब और भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? नंबर नाम बता दीजिए प्लीज। नंबर है अंत में यानी कि 7962 7962। प्लीज नाम बता दीजिए। अजय भगत जी है, संतोष कुमार जी हैं, राहुल पासी जी हैं, ज्योति खटवाड़े जी हैं, दिगंबर जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, निशान रायबोले जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, और संजय सानी जी हैं, संगीता मुर्गा जी हैं, सीता गोप जी हैं, नजीर अंसारी जी हैं और पूजा भास्कर जी हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम देवेंद्र दीपक कुमार गायकवाड़ जी को।

0: दीपक कुमार गायकवाड़ जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं और सच में बहुत मेहनत किया, सच में लगातार लगे हुए हैं, हर सवाल में जवाब दे रहे हैं, लेकिन नंबर
1: नमस्कार करता हूं सर आपको और आपके श्रोताओं का रेडियो हॉट स्टार पर बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: थैंक यू सो मच दिल से वेलकम करते हैं हम आपका, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है बहुत वैल्यूएबल होता है और सच में जो भी फीडबैक देते हैं दिल से देते हैं और बहुत तारीफ करते हैं और बहुत दोस्तों को जोड़ते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी फीडबैक के बारे में बताऊं आपको कि वो फीडबैक हमारे दिमाग में 6 बजे के बाद जैसे कार्यक्रम चालू होता है ना, तब ऑटोमेटिक ही आने लगते हैं, दिल से आते हैं।
0: अच्छा क्या बात,
1: पहले कोई प्लानिंग नहीं बनाते हम, ऑटोमेटिक हम सुनते जाते हैं कार्यक्रम और आते जाते हैं हमारे थॉट और हम आपको बताते जाते हैं।
0: क्या बात है मतलब सच में आपके फीडबैक भी बहुत अच्छे होते हैं और आप इन
1: दुकान पे जी
0: और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी है
1: जी
0: अच्छा बोलते हैं।
1: जी सर, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। तो सबसे पहले दीपक जी, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, बता दीजिए इस गाने का बोल क्या था जो आपने सुना उल्टा पुल्टा?
1: ये लड़का हाय अल्लाह
0: कैसा है दीवाना, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल सही जवाब है। तो और गाना कौन सा सुना चाहते हैं आप?
1: सर गाना तो मैंने 3 सोच के रखे हैं, पर एक गाना भी, कोई रक्षाबंधन आने वाला है तो सर रक्षाबंधन पे एक गाना हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगी।
0: तो बताइए।
1: तो मैं बता दूं गाने के बोल। चंदा रे मेरे भाई से कहना, गाना गा के बताऊं क्या?
0: मतलब मैं ढूंढ लूंगा, नो प्रॉब्लम।
1: चंदा रे मेरे भाई से कहना, बहना याद करे।
0: और भी कोई था याद? एक मुझे
1: फिर एक है, एक जरा है डिस्को डांस वाला, तू है लड़की तीखी मिर्ची भिंडी बजा रही।
0: और
1: उसके बाद है सर किशोर कुमार का गाना है चील चील चिल्ला के।
0: आपका तीनों गाना,
1: तीनों
0: जो कहिएगा वो मैं प्ले कर दूंगा, नो प्रॉब्लम।
1: फर्स्ट वाला बजा तो ज्यादा अच्छा,
0: तो यही बजाऊंगा, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन
1: जी सर।
0: बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि इसे मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक मुझे यानी रक्षाबंधन पर एक और गीत है भैया दूज का, शायद वो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी मुझे गाना बेहद पसंद है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस गाने को सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए
1: जी। धन्यवाद, शुक्रिया।

0: रहना।
1: ओके, फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे सवाल करते हैं, फिर सवाल के बाद एक गाना सुनवाते हैं आपको।
2: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
3: प्यार जहाँ नहीं करना कहता है सारा, कोई कर ले कुछ हो कि ये प्यार रहता है। लड़ जाती है आँख, उड़ जाती है नींद, लग जाती है आग मजबूर हो के हाय।
2: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे जवाब आए हुए हैं और सबसे पहला जवाब यानी काजल झक्का जी का और यानी प्रीति राय दास जी का। ओहो, अजय भगत जी हैं और संतोष कुमार जी हैं, आर के रवि जी हैं, रुवीरा नाथ जी हैं और सुनील कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, ज्योति जी हैं और हमें सरोजीत जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, सुनीता गोप जी हैं और हरीश कुमार जी हैं और पीकू राय जी हैं, मतलब बहुत

0: तो कौन लगाते हैं काजल झक्का जी को, मतलब काजल झा जी को? बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्का जी गीत मस्ती में।
1: थैंक यू।
0: वेलकम जी। और क्या करत बनी रहुआ?
1: कुछ ना, रोटी बनावा।
0: रोटी बनावा तनी, अब तो हमारा खाए के मन करत बा। हाँ हाँ, हम यहाँ से मन उड़ के आवतनी, अबे यानी पहुँचतनी वहाँ पे सीतामढ़ी में, है ना?
1: का
0: हो जाई? अरे हम यानी कि पंख रही तब न उड़ के आती हम। सॉरी, चलिए बताइए, पहले जवाब बता दीजिए क्या है।
1: प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है।
0: अच्छा जी, ये बोल हो गया। और आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें?
0: हमें तुमसे हुआ है प्यार। ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, और ये रहा अगला और इस राउंड का आखिरी सवाल।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: मुझे कितना सताती है, कभी हंसाए मुझको वो बहुत लड़की याद आती है, कभी रुलाए मुझको।
3: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और इस बार सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है संगीता अंबुलकर जी का और इन प्रीति रायदास जी हैं, आर के रवि जी हैं और सुनील कुमार जी हैं, अजय भगत जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं और दिगंबर जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, बाबूलाल अंजाना जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं और यहाँ पे पूजा भास्कर जी हैं, गजेंद्र सरकार जी हैं, अजय कुश जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं और अस्मिता गोप जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल कॉल लगाते हैं संगीता अंबुलकर जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है संगीता अम्बुलकर जी।
1: थैंक यू। कब से ट्राई कर रही हूँ सर, मैं आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया।
0: आप तो और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ट्राई कर रहे हैं, उनका अभी तक नंबर नहीं लगा और आपका तो छक्का मार दिया। फिर भी
1: आधा घंटा हो गया मुझे।
0: तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आते के साथ आपका नंबर लग जाएगा। ऐसा तो कभी कभी इत्तेफाक हो सकता है।
1: गंदी आदत लग गई है जीतने की, है ना।
0: हाँ वो तो है, लेकिन ये है कि जब आप लोग सोचते हैं कि मुझे मतलब आना है तो आना है, मतलब आप लोग दम यानी कि
1: नहीं, पर हमने जिद भी नहीं छोड़ी, हम 10 बजे तक ट्राई करते रहते हैं, ये भी बोले आप।
0: हाँ ये भी बात है, आप लोग ट्राई करते रहते हैं लगातार, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि आप लोग इतना ट्राई करते हैं तो मैं स्पेशली अगर मेरे पास समय होता है तो मैं स्पेशल कॉल जरूर करूंगा, यानी कुछ दोस्तों को ही मैं करूंगा लेकिन मैं जरूर करूंगा, और उनको मैसेज आया कि मैं आपको कॉल करूंगा, तो आप लोग प्लीज जिनको मैसेज आया वो मुझे ओके लिख के जरूर भेजें, क्योंकि
1: जी जी
0: क्योंकि मैं भी आपको आपको फोन कर सकता हूँ, है कि नहीं।
1: जी जी।
0: हाँ फिलहाल अपना जवाब बता दीजिए मुझे।
1: हाँ मुझे इतना सताए इतना रुलाए हुआ लगाना तुम बिन का।
0: ओके, और आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: और आधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा।
0: क्या बात है, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।

0: और ये रहा ये राउंड फोर के बारे में जानकारी।
1: दोस्तों अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का चौथा और आखिरी राउंड रिवर्स सॉन्ग गेस। इस राउंड में आपको सुनने को मिलेंगे गाने के बोल रिवर्स में, यानी बोलों का क्रम उल्टा होगा। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये किस गाने के बोल हैं। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद की गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, रिवर्स बोल सुनिए और गाना पहचानिए। रिवर्स सॉन्ग गेस राउंड शुरू करते हैं।

0: तो ये रहा इस राउंड का पहला सवाल, रिवर्स राउंड।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। लिया सुन ओ पिया किया किया किया, जो करियो मत फिर मगर, लचकीना के लचकी कमरिया, चमकीना के चमकी बिजुरिया, छनकीना के छनकी पायलिया। दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास दो लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया है और बाकी लोगों का जवाब तो गलत गलत गलत आया हुआ है। और दो लोग वो कौन है मैं बता दूं, एक है अजय कुश जी और एक है गजानंद सोलकार जी। बाकी जितने दोस्तों ने जवाब दिया है सबका जवाब गलत है, तो सीधे अजय कुश जी को कॉल लगाता हूँ पहले मैं।

0: अजय कुछ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मतलब मैं दोनों को कॉल लगाऊं क्योंकि दो लोग ही नहीं जवाब दिया है, बाकी दो लोगों ने जवाब दिया ही नहीं है, है कि नहीं? और जवाब क्या है जरा बताएंगे मुझे आप प्लीज?
1: पायलेशन के नाम, मैंने तो तुक्का भी डाला था, ये लग गया तो बच गया।
0: तुक्का लगाया है लेकिन बिल्कुल जवाब सही था आपका।
1: मगर जल्दी तो तुक्का ही लग सका जी।
0: अच्छा अब तुक्का लगाते हैं, लेकिन आप तुक्का भी काम कर गया।
1: मतलब तुक्का ही करता जी, नहीं तो फिर लेट चला जाए, पीछे चला जाए।
0: हाँ ऐसे आपने मतलब आगे नहीं भेजा है, आपसे पहले भेजने वाले बहुत लोगों ने भेजा लेकिन उनका जवाब गलत था। हाँ आपने देर से भेजा लेकिन आपका जवाब सही था, ये चीज है।
1: मैं बिल्कुल सही कंफर्म होना तो ही मैं भेजता हूँ।
0: इसीलिए तो आप अभी विनर कहला रहे हैं। तो आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: एक फिल्म का नाम जी हरफन मौला।
0: हरफन मौला हाँ?
1: वो गाने ये बोले हैं, वो दोड़ी प्यार की ना टूटे,
0: दोड़ी प्यार की ना टूटे,
1: आरफी की आवाज में और आशा भोसले साथ।
0: ठीक है मैं देखता हूँ उस गाने को।
1: ये गाना तो सुनना था।
0: दोड़ी प्यार की गाना तो मुझे मिल चुका है, बस जल्दी से डाउनलोड हो जाए, मजा आ जाएगा।
1: आप अभी पहली बार सुनोगे शायद?
0: अरे आपके गाने ही ऐसे होते हैं कि मैं पहली बार ही सुनता हूँ, पता ना कहाँ कहाँ से चुन चुन के लाते हैं। आपने अपने जितने भी गाने बजे, और मैं आपको सही बात बताऊं,
1: पहली बार बजे शायद।
0: हेलो, हमें आपके सबसे पहला वो गाना सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा, जो सबसे ज्यादा वो वाला जो यानी के मतलब किशोर कुमार का है, ऊंचे लोग वाला गाना है।
1: ऊंचे लोग गैर सही।
0: हाँ जी,
1: आज तू गैर सही।
0: हाँ वो गाना मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब क्या ही हम बताएं, वो मैं जब भी मेरा कभी मन करता है जी।
1: और वो भी गाना बढ़िया, गुलोगे गुल, वो भी बहुत बढ़िया।
0: हाँ वो भी। और उस गाने को लेके आते हैं हमारे दिगंबर जी हमेशा,
1: बहुत पसंद है लोगों ने वो।
0: हाँ वो भी गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: हाँ जी हाँ,
0: तो फिलहाल मैं ये सुनाता हूँ, है ना, एंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद।
0: ओके, और थोड़ी देर में कॉल लगाऊंगा हम गजानन जी को भी, इसके बाद में सवाल करूंगा।

0: और गजानन सुरकार जी आपको भी कॉल लगाया गया क्योंकि दो ही लोग का सही जवाब था, एक आपका और एक अजय कुश जी का, इसलिए आपको भी कॉल लगाया गया और आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आपकी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: मेरी पसंद का तो अभी मैं दो गाने के नाम में ले रहा था, एक यानी गुलों का रंग और एक आज तू गैर सही, कौन सुनवा दूं?
1: गुलों का रंग।
0: ओके चलिए एंजॉय कीजिए इस गाने के। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: वेलकम जी।

0: ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर चार।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। बिना तेरे दिल लगता नहीं, होती नहीं रात गुजरता नहीं दिन, होती नहीं रात गुजरता नहीं दिन, होती नहीं बात मेरी तेरी दिन। जिस
2: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।

0: मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, ओ माय गॉड रिकॉर्ड टूट गया है इस बार तो क्या ही बताऊं। सबसे पहले यानी प्रीति रायदास जी का और आर के रवि जी का है और हमारे ये सुनील कुमार जी का, नंदलाल जी का, रुबीना नाथ जी का, पीकू राय जी का, ज्योति जी का, संतोष कुमार जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, बाबूलाल अंजाना जी का और हमारे ये रूपचंद गोयल जी का, गोपाल परिदार जी का, विष्णु चंद्र जी का, दिगंबर जी का, सर्वेश भगत जी का, गजानन सुरकार जी का, एक साहब और भी जुड़े हुए हैं, क्या नाम है भाई, ये गुड्डू कुमार जी, ऐसे गुड्डू कुमार जी, मनीषा शर्मा जी हैं और ये शिल्पा बेन जी हैं, आरिफ सिंधे जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, हरीश जी हैं, एक साहब और भी हैं, क्या नाम है, ये नरेंद्र जी होंगे शायद, मेरे ख्याल से यही है, मेरे ख्याल से नाम इनका डीपी पे यही शो कर रहा है। फिलहाल कॉल लगाते हैं प्रीति रायदास जी को। अभी मैं आप ही का नाम ले रहा था कि आप ही से प्रोग्राम का आगाज हुआ था और फिर अभी आपका नंबर ही लग गया, क्या बात है।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी बोलिए, ये दूसरा कॉल है आपका।
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। तो प्रीति रायदास जी, अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि आप ही से प्रोग्राम का आगाज हुआ था और प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, फिर अभी आप ही का नंबर लग गया, इत्तेफाक की बात है, क्या बात है, मतलब आप सुन रही है। ओके जी, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी बीच में, जैसे नाम सुना फिर पार्टिसिपेट कर दिया और छक्का लगा दिया।
1: नहीं सुन रहे थे।
0: अच्छा,
1: नंबर ही नहीं आ रहा था मेरा।
0: अच्छा, नंबर नहीं आ रहा था, वो तो बहुत से दोस्त है ना जल्दी जल्दी भेज देते हैं ना, इस बार आपका नंबर लग गया फाइनली, क्योंकि गाने आपने पहचान लिया है ना
1: जी।
0: तो गाने का बोल क्या है बता दीजिए।
1: जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती,
0: दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती,
1: मुस्कान पिक्चर का।
0: हाँ, और आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: दिल पर देसी हो गया मूवी का, तू कौन कहाँ से आई है,
0: तू कौन कहाँ से आई है।
1: हाँ
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय।

0: और यहाँ बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था। ओके, कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं यहीं पे सवाल करूँगा। रिवर्स गाने का बोल ये रहा, सवाल नंबर 3।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। जाना ना किसी ने रिश्ता मेरा तेरा, छुपाना मैं नजर रखना मैं दिल मुझे, दीवाना थोड़ा सा पागल तू थोड़ा सा पाएगा, रहना दिल ये बिछड़ के तुमसे भी पल एक, अब लाएगा रंग क्या जाने हमारा मिलना यारा ओ यारा। दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।
0: बिल्कुल।

0: इसके लिए हम सॉरी, मेरी गलती नहीं है, नेट स्लो चल रहा है इसलिए ऐसा हो सकता है कि डिस्टर्ब कर रहा है। फिलहाल मेरे पास सबसे पहले मैं
1: की बात मत पूछो जी, सच्चे यारों की बात मत पूछो।
0: वेलकम करते हैं और

0: और नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं बीच में रुक गया था। नो प्रॉब्लम, फिलहाल आगे बताता हूँ। हमारे संतोष कुमार आर्जे आकांक्षा जी भी हैं।
1: जो कहते हो हम
0: कि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, अगर
1: वो करते हैं
0: मुझे रोन हो रहा है, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। अजय कुश जी भी हैं और हमारे देवेंद्र सिंह जी हैं, दिगंबर जी हैं, अशिल्पा बेन जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, काजल आर जे रिया खान,
2: कुछ शर्त रख लो।
0: ओके, थैंक यू सो मच। फिलहाल अगला जो डिमांड कर रहे हूँ यार, मैं कॉल लगाता हूँ हम अपने सोनू गौतम जी को। माय गॉड, नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो।

0: बहुत बहुत वेलकम है आपका फिर से सोनू गौतम जी।
1: जी सर।
0: और
2: दिलदारों की बात मत पूछो जी, तुम दिलदारों की बात मत पूछो।
1: हाँ, नेटवर्क तो डिस्टर्ब कर रहा है सर।
2: जो प्यार किया
0: होगी लेकिन रेडियो हॉटस्टार पे नहीं जा रही होगी बिल्कुल, क्योंकि उसका नेट कट गया है अभी बिल्कुल।
1: अच्छा जी, अच्छा।
0: तो ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है

0: फिलहाल मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ, अगर नेटवर्क डिस्टर्ब होगा तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं दोबारा प्ले करने की कोशिश करूँगा, जल्दी से सवाल करता हूँ।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। यार तक अभी थे कहाँ, दिया बदल ही रंग मेरा जैसे, तो तुमने प्यार तेरा है मिला से जब उठे चमक जुगनू अखियों में सुनी सुनी।
2: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें

भाई मैं गाना बदल बदल के नहीं प्ले कर रहा हूँ, एक्चुअली नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है और ये कह रहा है कि आप प्रोग्राम मत कीजिए, प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। तो मैं क्या करूँ यार, मुझे तो रोना आ रहा है। वैसे मेरे पास बहुत से दोस्तों के जवाब भी आए हुए हैं और सबसे पहले हमारे पास जवाब पहुँचा हुआ है हमारे ये सुनील कुमार जी का, ओके, और उनके पास से दिगंबर जी हैं, ओके जी, रोहित जी हैं और सर्वेश भगत जी, सोनू गौतम जी हैं और अजय भगत जी हैं और रूप चंद जी हैं दिगम, और हाँ ये क्या कहते हैं आर के रवि जी हैं और दीपक जी हैं और संतोष कुमार जी हैं और भी एक क्या नाम है भाई, ये रोजित खान जी, अच्छा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रोजित खान जी आपका, काजल झकार जी हैं, गोपाल परिदार जी हैं और इनका तो नाम मुझे नहीं पता है क्या नाम है इनका, ये संजीव शर्मा। कॉल लगाते हैं।

0: काम करते हैं। एक्चुअली ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब कनेक्ट है, जब फिलहाल तो कनेक्ट हो गया है, देखते हैं आगे ये कितना देर तक साथ देता है। उसी बात पर
1: देख लीजिए,
0: आप जवाब बता दीजिए, जवाब क्या था?
1: ये जवाब एक मिनट
0: जी,
2: हम बातों में है ना, हम भूल जाते हैं, एक मिनट, फिर डिस्कनेक्ट हो गया है।
0: फिलहाल तो मैंने
2: सुनी अखियों में
0: बिल्कुल जवाब सही है आपका। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं
2: जी? हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, फिल्म मर्द का गाना है।
0: तो भाई आपसे यही कहेंगे, अपना यानी कि अपना तंबू में बम्बू लगाए रखिए, क्योंकि बेचारा इंटरनेट रुका हुआ है, इससे भागना नहीं चाहिए, लगा के रखिएगा एकदम। ओके, एंजॉय कीजिए गाने को, सुनवाते हैं।
2: धन्यवाद।

ए हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, लगाए बैठे, लगाए बैठे, हम तो तंबू में, तंबू लंबू में, लंबू

0: से, हम तो पहले से घुंघटा उठाए बैठे, हम तो पहले से घुंघटा उठाए बैठे,
1: हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे।
2: ओके, तो ये रहा आज का इस यानी ग्राउंड का आखिरी सवाल।
3: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
4: छोड़ ना दामन ना कदे दूजे एक कभी, कि रब तू ले कसम, कि रब मैं लू कसम, गई खूह विच इश्क गई हो तेरी मैं ढोलना, मेरे ओ साजना मेरे ओ।
3: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: हेलो
1: भाई संतोष कुमार जी, आप विनर बनते हैं क्योंकि सिर्फ आपने ही सही जवाब दिया है, बाकी दोस्तों ने तो जवाब गलत गलत गलत गलत गलत गलत ही दिया है, इसलिए मैंने बिना नाम लिए कॉल लगा दिया। संतोष कुमार जी नमस्कार, तो बताइए गाना कौन सा था?
0: वो मेरे ढोलना आज की पिक्चर का।
1: बिल्कुल सही जवाब, एकदम 100% नो डाउट। तो और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
0: सर राजा हिंदुस्तानी का आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मैं कहूंगा कि अगर दिल कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे? एंजॉय कीजिए इस गाने को। तो जवाब रहेगा
0: थैंक यू सर।
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
0: तुम बहार बन
1: जाए कीजिए।
0: थैंक यू सर।

0: चलिए स्पेशल कॉल लगाना शुरू करते हैं और ये मैं रेडियो हॉट स्टार के ऐप से लगा रहा हूँ इट्स कुमार जी को। इट्स कुमार जी यानी विवेक कुमार जी बहुत बहुत आपका वेलकम है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे?
0: हम तो एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक के साथ साथ बहुत स्मार्ट है।
1: ओह क्या बात है।
0: जी जी जी यही बात है।
1: जी।
0: तो भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं?
1: आजकल मेरी टीचिंग चल रही है सर।
0: अच्छा, रेडियो हॉटस्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा अच्छा, जितना घास जाए उतने हमारे लव कम पड़ जाएंगे आपके रेडियो
0: के। ओह थैंक यू सो मच। और आप लोग धमाल मचाते हैं वहाँ पे चैट रूम में ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मस्ती करते हैं, मतलब मुझे वहाँ पे मौका नहीं मिलता है कि मैं भी आकर आप सबके साथ वो यानी हम भी चटियाए और साथ साथ ही आए।
1: बहुत सही।
0: सच में वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का वो चटी का वहाँ पे यानी चटियाना बतियाना और बता ही आना। बिल्कुल। फिलहाल बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: खुली फालतू सॉन्ग सर।
0: जी
1: खुली फालतू।
0: और कोई?
1: जी।
0: इसके अलावा
1: अभी तो एक ही माइंड में आ रहा है सर, दूसरा सोचना पड़ेगा।
0: तो दूसरा सोचिए, एक दिन आपका ये प्ले हो चुका है।
1: अच्छा तो दूसरा बताएं।
0: हाँ दूसरा बताइए।
1: दूसरा
0: सोचिए।
1: फिर उसका सुन लीजिए सर, दिल वाले का।
0: हाँ कौन सा?
1: ओल्ड है, फेमस है, शायद आप भी जानते होंगे, पहला सॉन्ग वो गाता है जहाँ में। वो लड़की बहुत याद आती है।
0: ये तो यानी ये तो मतलब दिल वाले का नहीं है, वो तो यानी कि क्यामत का है
1: ना सर, ये तो उसी का है ना, ये दिल वाले का है ना।
0: वो लड़की बहुत याद आती है, ये तो ये क्यामत का है,
1: तो साथ में कन्फ्यूजन में आ गया।
0: ओके कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इस गाने को सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए, है ना
1: जी। ओके थैंक यू सर,
0: वेलकम जी।

और दीपक कुमार जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपके प्रोग्राम के सवाल जवाब के चक्कर में हम तो खा आसमान हो नीचे आसमान हो। भाई पहले खाना खा लीजिए, प्रोग्राम तो सुनते रहिएगा ना। और अगला कॉल लगाते हैं दिगंबर जी को। तैयार रहिएगा दिगंबर जी।

0: वेलकम करते हैं। कैसे हैं दिगंबर जी?
1: हेलो, नमस्कार अमन सर जी।
0: नमस्कार। और आपके चेहरे की हंसी मुझे साफ साफ दिख रही है कि आप भी ही आ रहे हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लग रहे हैं गाने सुनने आपका शो।
0: और बताइए, और कैसे हैं?
1: आज का शो सुपर स्टार रहा।
0: चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा ना?
1: कल का भी टॉप रहा एकदम।
0: अच्छा, ओके, अगला दिन भी टॉप रहेगा, यानी कि कल ओल्ड इज गोल्ड है।
1: हाँ, वो तो चलता ही रहेगा, आपकी आवाज आ जाए तो और शोर अच्छा लगता है।
0: अच्छा, आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: वो गाना है उसका एक सॉन्ग, वो दिल तू जान तू जीना मरना तेरे संग, यही है आज।
0: दिल तू जान तू
1: जान,
0: देखता हूँ,
1: जीना मरना तेरे संग है यार जी, यही है,
0: यही है यार जी।
1: हाँ, ये सर जी,
0: मैं देखता हूँ, इस गाने को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में नहीं मिल पा रहा है। दिल तू जान तू
1: जान जीना मरना,
0: यही है आरजू, है ना?

यही है आरजू, लेकिन फिलहाल कॉल लगाते हैं अजय भगत जी को। अजय भगत जी के पास मेरा कॉल नहीं जा पा रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद उनका नंबर बिजी है। बिल्कुल इनका नंबर बिजी जा रहा है, इसीलिए इनका कॉल नहीं लग सकता है। अगला कॉल लगाते हैं।

0: जागे जागे
1: रूपचंद गोयल जी को लगाते हैं।
0: सोई सोई रहती
1: रूपचंद गोयल जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो, स्पेशल कॉल में आप शामिल हो गए हैं।
2: थैंक यू सर जी,
1: वेलकम जी। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: आज गीत सुनना है पद्मावत मूवी का, राजस्थानी कल्चर का, घूमर घूमर
1: घूमर
2: जी।
1: घूमर फ्रॉम
2: पद्मावत मूवी।
1: पद्मावत, ओके, देखता हूँ मिल जाए मुझे। घूमर तो मिल गया है, गाना भी मिल गया है और सुना भी दिया। इंजॉय कीजिए गाने को। ओके,
2: थैंक यू,
1: वेलकम जी।

0: बहुत बहुत आपका वेलकम है हरीश कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया।
0: और
1: बढ़िया
0: जी जी
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए। ओके, और पहली बार जुड़े हैं रेडियो हॉट हिटर में, कैसा लगा पहले ये बताइए।
1: बढ़िया लगा सर जी।
0: ओके जी, आज स्पेशल कॉल किया गया आपको क्योंकि आप उस समय से पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपका नंबर नहीं आ पा रहा था तो आप पीछे जा रहा था, लेकिन नो प्रॉब्लम, स्पेशल कॉल जिंदाबाद। आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप? आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: अपनी पसंद का ही कोई गाना सुना दो।
0: अपनी पसंद का ठीक है, फिलहाल मैं ये गाना सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए, गहरा हुआ मुझे पसंद है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। अगला कॉल लगाते हैं सीधे।
1: मोहब्बत का तू इंकलाब है मेरा जान।
0: बहुत बहुत वेलकम है अजय भगत जी। इससे पहले आप बिजी थे बहुत ज्यादा।
2: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कैसे हैं?
2: बढ़िया।
0: ओके, स्पेशल कॉल में आपका बहुत स्वागत है। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
3: हेलो
0: हेलो,
2: पहले मैंक से बात कर लो।
0: मैंक जी, कैसे हो बाबू?
3: अमन जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते मैंक, और कैसे है बाबू?
3: हम तो ठीक है। आपने मेरा वो रेडियो हॉटस्टार पे जुड़वा दिया।
0: मतलब
3: रेडियो हॉटस्टार पे?
0: हाँ,
2: वो अपनी मम्मी के नंबर से जो आईडी नहीं बनाया था।
0: अच्छा,
2: आपने उसका पासवर्ड रीसेट करवा के उसको करवाया था ना?
0: हाँ,
2: मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं तो गया था बैजनाथ धाम, बाबा धाम जो जाते हैं हम लोग।
0: अच्छा अच्छा, हाँ।
2: तो ये अपने से यानी बताया, मुझे इतना एक्साइटेड था बता रहा है फोन करके कि मुझे अमन जी ने फोन किया, मुझे वंशिका जी ने फोन किया, मेरा आईडी बन गया, बहुत खुश मुझे फोन करके बता रहा था। और उसके बाद बहुत खुश था
0: जी। हमारे पास उनका मैसेज आ रहा था कि मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उनका ऑलरेडी उनका आईडी मतलब बना हुआ था, बस उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उनका पासवर्ड को रीसेट करके उनको बताया कि ये पासवर्ड डालोगे तो खुल जाएगा, तो फिर उनका हो गया।
2: हाँ, वो अपने आप सारा कर लिया।
0: जी जी जी, बिल्कुल सब कुछ हो गया। और उनसे बात हुई थी मेरी।
2: जी जी, बहुत खुश था। आपके लिए तो परेशान रहता है।
0: जी जी,
2: गाने के कुछ बोले।
3: अमन जी।
0: हाँ जी बोलिए।
3: गाना मैं बोलूंगा।
0: हाँ जी बोलिए, जरूर प्ले करूंगा।
3: हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था।
0: हमने
3: वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था।
0: वही लगाया भाई, यानी कि कहाँ दिल लगा लिया है और कहाँ मना था।
2: बच्चों की पसंद ऐसी होती है अमन जी।
0: हाँ जी, समझ में आ रहा है मुझे। हाँ ओके, तो ये
2: एक बारी मेरी वाइफ से बात कीजिए।
0: हाँ दीजिए।
4: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत वेलकम है आपका
4: जी। थैंक यू। और बताइए कैसे हैं आप?
0: जी हम बहुत स्मार्ट हैं। और आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है?
4: पूजा।
0: पूजा
2: बात हुई है।
0: अच्छा जी, चलिए तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका रेडियो हॉटस्टार में। आप सभी सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका पूरा फैमिली सुनता है।
2: जी, जी, पूरा फैमिली के साथ पूरे गांव को जोड़ दिया।
4: हाँ, ये तो पूरा गांव में भी आपको ऐड कर दिए हैं। हर कोई सुनता है आपके बात।
0: जी जी जी, हमें पता है। और कल हमारे वो दोस्त आरके रवि जी का बर्थडे भी आने वाला है, तो उनके स्पेशल सॉन्ग रिक्वेस्ट जरूर सुने इन 10 बजे से, और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो गाना कौन सा सुनवाना, मतलब वो जो बाबू ने बताया वो सुनना है, कुछ और भी सुनना है? तब तो दो गाना मुझे प्ले करना पड़ेगा, आप दोनों की पसंद पे।
2: तुम बताओ अपने पसंद का गाना।
4: दिल हर कोई देता है, हम जहाँ भी देंगे ये गाना सुनना मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है। दिल हर कोई देता है, ये मतलब इन मोहरा फिल्म का गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। लेकिन पहले यानी कि मैंग बाबू का, फिर आपकी पसंद का गाना मैं प्ले करता हूँ, ठीक है?
4: जी
0: एंजॉय कीजिए।
2: थैंक यू।

गाना है और म्यूजिक तो कमाल की। और म्यूजिक के डायरेक्टर हैं वो है विजू शाह।

0: बहुत बहुत वेलकम है पीकू राय जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं एकदम
1: जी।
0: बोले तो चकाचक
1: जी सर। अरे मैं छोटा में था ना, वो जो पतंग एंटीना जो अपना बूस्टर में लगता था, उसमें से निकाल करके रेडियो के एंटीना में बांधता था तो पकड़ता था।
0: ओके तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे भाई जी? पीकू राय जी।
1: जी सर, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, ये सुन।
0: क्या बात है, ये गाना तो बहुत
1: जी। और सर उम्मीद है आप थोड़ा गुनगुनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: एकदम तेरी चाहत के दीवाने हुए ये गाना हो, इन प्ले और मैं ना गुनगुना, ऐसे कैसे हो सकता है
1: जी।

0: कॉलिंग दिख रहा है, रिंगिंग नहीं दिखेगा तो दिक्कत ही है। हाँ लिख दिया रिंगिंग। जी शिल्पा बहन जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में। कैसी हैं आप?
1: जी बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत ही स्मार्ट हैं।
1: वो तो पता है।
0: हाँ तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी वो बॉडीगार्ड का तेरी मेरी प्रेम।
0: तेरी मेरी प्रेम कहानी? अच्छा
1: हाँ।
0: तेरी मेरी,
1: हाँ भाई
0: मिल जाए तब ना। ये तो मुझे वो मिला है, यानी कि प्रेम कहानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी, यानी किताबों में भी ना मिलेगी, वो मुझे मिल रहा है
1: ना। वो पुराना है, वो नहीं नया बॉडी कट का है ये।
0: चलिए मैंने सुनवा,
1: तेरी मेरी।

0: विभूति भूषण शरण जी, आज फिर आपको मौका मिल गया। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
1: ठीक है।
0: हाँ, और आई एम सॉरी, ज्यादा इंतजार करना पड़ता है आप लोगों को लेकिन कोई बात नहीं, आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: स्पेशल कॉल में एक गाना है, ये बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत है।
0: बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं,
1: हाँ मुझे प्यार करने की आदत है।
0: मैं ढूंढ रहा हूँ, बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं,
1: मुझे प्यार करने की आदत नहीं।
0: गाना तो मुझे,
1: मैं जैसा भी हूँ हाँ, जैसा भी हूँ सामने हूँ खरा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। जब आप गाते होंगे तो पूरा धमाल मच जाता होगा, है ना?
1: धन्यवाद
0: जी, है कि नहीं?
1: आवाज कट कट जा रही है।
0: थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज बहुत ज्यादा, इसलिए
1: बीच बीच में से प्रोग्राम में भी कट जा रहा था, बंद हो जा रहा था,
0: तो मैंने उसको बाद में मोबाइल से कनेक्ट किया है तब जाके तो चल रहा है, नहीं तो बिल्कुल ही गायब हो गया था। हाँ, तो डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा, तो मैं आज आखिरी कॉल लगाया हूँ, आखिरी कॉल के बाद एक दो गाने प्ले करके जाऊंगा, ओके, जो मेरी पसंद के गाने होंगे।
1: ओके
0: जी, तो फिलहाल आपका गाने को डाउनलोड कर रहा हूँ, चलिए एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।

और अर्का रवि जी लिखते हैं कि रातों में मीठे मीठे ख्वाब सजाना, दिन के सारे गम भुलाकर सो जाना, हम आपकी यादों में खोए रहते हैं, आप भी थोड़ा मुस्कुरा के सो जाना। अच्छा जी, इसी बात पर फिलहाल मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और इस गाने के बाद आखिरी गाना प्ले करूंगा जाते जाते। ये गाना मुझे बेहद पसंद है।

ओके, तो इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। और अजी ठहरो, जरा रुको तो, ये गाना आप सबके नाम।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: लाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
4: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है। और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ? पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

0: आओ
1: देखो हम पर शक ना लाओ,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।